हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6 बजने वाले हैं और अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गयी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति

0: में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए करें वंदना इस पावन मातृभूमि को। ये देश जहां हमने लिया जन्म, आइए करें उसकी पावन धारा को नमन।

देश वंदना के बाद आइए करें स्मरण प्रथम वंदनीय भगवान श्री गणेश को।

0: भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस भजन के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 6:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। वाचन स्वर रूपेश कंवर का।
1: राम राम, जय जोहार। मैं हूं अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। आज केंद्र सरकार राज्य सरकार अबड़ अकन हमर किसान भाई मन बर योजना संचालित करे हवे, ताकि हमर जो खेती किसानी के बूता काम में हमन योजना के माध्यम से अपन अक्ति हल अक्ति आमदनी कमा सके। आज हमन बात करबो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जात राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आज हमर देश भर के किसान भाई मन के आमदनी दुगना होते। जिसे बात करी संगवारी हो, फल फूल सब्जी मसाला नारियल काजू कते कनी से उत्पादन हवे, जिला आज हमारे किसान भाई मन बढ़ात हवे। योजना के मुख्य उद्देश्य के गोड़ बात करत हन अपन करा, बागवानी फसल के क्षेत्र ला ज्यादा से ज्यादा हमारे बढ़ाना हवे, किसान भाई मन की आमदनी ला दोगुना करना है, संगे संग गांव स्तर में बागवानी मिशन के माध्यम से रोजगार ला हमला नवा अवसर प्रदान करना है, प्रोसेसिंग मार्केटिंग और निर्यात ला हमारे बढ़ाना हवे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के शुरुआत की बात करी संगवारी हो, तो 2005-06 के इवला शुरुआत करे हवे। उद्देश्य ही हवे कि नवा बगीचा बना के ओमा हमन ज्यादा से ज्यादा सब्जी भाजी लगा के दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकतन। सरकार हमें मदद करत हवे सब्जी फल फूल मसाला अनुदान की बात करी संगवारी हो, 40-50% तक हमला एमा सहायता राशि सरकार कति ले दे जाते। नर्सरी जिसे बनावत हवा तेमा अच्छा क्वालिटी के पौधा तैयार करे बर हमर सरकार ह सहायता राशि घलो देते। अभी देखी बरसात के दिन चलत हवे और पाछू महीना हमन पानी बर काफी दिक्कत हो रही हवे, चाहे खेती किसानी के बात करी चाहे हमार पीए के उपयोग के बात करी। एकरे खातिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत टपक सिंचाई योजना हवे, जेकर माध्यम से हमन पानी बचाए बर जो योजना है ओकर हमन लाभ ले सकत हन। पानी बचाए के सिंचाई योजना के पद्धति के माध्यम से हमन 50% एमा सब्सिडी घलो प्रदान कर जाते हैं। पाली हाउस है, ग्रीन हाउस है, एकर से फायदा ये होते कि अगर हमन पाली हाउस और ग्रीन हाउस में सब्जी भाजी की खेती करतन तो ओमा के जो सब्जी भाजी है ओमा ज्यादा से ज्यादा पैदावार होते, अब कोनो प्रकार के रोग कीट व्याधि लगे के बहुतेच कम संभावना रहते।

कोनो किसान भाई मन पाली हाउस ग्रीन हाउस अगर लगाना चाहत हो तो उद्यान विभाग कति ले एमा 50% के घलो अनुदान राशि प्रदान करे जाते। एकर संगे संग संगवारी हो भारत सरकार द्वारा चलाए जाता हवा कि जितके ज्यादा होए हमन प्राकृतिक खेती ला महत्व दी, प्राकृतिक खेती अपनाई, जैविक खेती अपनाई, तो एकर बार उद्यान विभाग कति ले जैविक खाद बनाए बार जो हमन घुरुवा कथन ओला घलो बना के हमार सरकार ह देथे, तो एकर बार अपन ला शासन कति ले अनुदान प्रदान घलो करे जाथे। जैविक खेती ला हमन ला आगे बढ़ाए बार उद्यान विभाग कति ले घलो

0: रहिथे तो एकर बर आपन ला शासन कति ले अनुदान प्रदान घलो करे जाथे। जैविक खेती ला हमन ला आगे बढ़ाए बर उद्यानी भाग कति ले घलो सहायता राशि प्रदान करे जाथे ताकि हमन ज्यादा से ज्यादा हमन जैविक खेती ला बढ़ा सकी। बात करबो हमर छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से बहुत ही अच्छा अवसर हवे और हमारे यहाँ के जो जलवायु हवे बहुत अच्छा है। हमन अभी के बेरा में बरसाती के बेरा में आमा है, बिही है, केला है, पपीता है, एकर हमन अभी खेती कर सकत हन। पताल, मिर्चा, फूल गोभी, एकर भी हमन सब्जी ले सकत हन। अभी बरसात के बेरा चलत संगवारी हूँ, हमन अभी के बेरा में जो फूल की खेती है, गुलाब है, गोंदा फूल है, एकरो खेती कर सकत हन। और सौधी जो पौधा हवा ओकरो खेती करके हमन उद्यानिकी विभाग के जो योजना हवा योजना के लाभ हमन ज्यादा से ज्यादा हमन ले सकत हन। आवेदन की बात करी संगवारी हो तो आपके लखठा के जो उद्यान विभाग हवा है वहाँ जाके अपन विभागीय स्तरीय जो अधिकारी हवा है, उद्यानिकी विस्तार अधिकारी है, जिला उद्यान विभाग कार्यालय हवा है वहाँ जाके अपन आवेदन कर सकत हैं। काबर की जितके ज्यादा हमन सरकारी योजना जुड़बो उतके ज्यादा हमन ला फायदा मिली, अनुदान मिली। और कहीं न कहीं एमा आज हमर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहता है कि हमन परिवर्तन खेती करके अगर हमन खेती किसानी करत हन तो कहीं न कहीं हमन एमा हमन दोहरा से दोहरा हमन आमदनी कमा सकत हन। काबर की आज हमन देखबो कम पानी के माध्यम से बागवानी फसल जो हवा ओला हमन अपना सकत हन। एमा पानी कम लगते, मेहनत कम लगते और मुनाफा ज्यादा होते। रोजगार की बात करी संगवारी हो तो एक हेक्टेयर में हमला 3 से 4 मनखे मन के आवश्यकता होते, बहुत हमन जो लागत रही से ओकर से हमला कम मिलते। साथ ही साथ बात करो संगवारी हो पानी के एमा बहुत ज्यादा बचत होते, जैसे कि हम अन्य फसल अपनावत हन तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होते, लेकिन हम बागवानी मिशन के तहत बागवानी खेती सही करत हन तो हमला पानी की आवश्यकता भी कम पड़ते, मेहनत भी कम पड़ते और संगे संग एमा हमार आमदनी ज्यादा होती। तो संगवारी हो अभी बेरा हवा जितके ज्यादा हुए हमन उद्यानिकी जो फसल हवा ओकर लाभ लेके हमन परिवर्तन खेती के माध्यम से अपन आमदनी ल दुगुना कर सकत हन। राम राम, जय जोहार।
1: खेती के बाद अभी आप सुन रहे थे वाचन स्वर रूपेश कंवर का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:35 हुए हैं और अब प्रस्तुत है श्रीराम चरित मानस गान एपिसोड।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की

आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे, ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन, वाचन स्वर संज्ञा टंडन का।
1: कि आशा पर संसार टिका है, ये सही तो है, पर आशा किसी ऐसी बात की ही की जानी चाहिए जो असंभव ना हो। यदि मनुष्य में इससे संबंधित समझ का अभाव है तो उसका बहुत सा समय और श्रम पूर्णतः असंभव वालों को भी पूरा करने की कोशिशों में बेकार चला जाता है। नेपोलियन के लिए इस शब्द का अर्थ अत्यंत सीमित था। सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहा करते हैं कि असंभव कुछ नहीं होता, वे जरूरत से ज्यादा आशावादी होते हैं और कई गलत फहमियों में जीते हैं। उत्साह बढ़ाने और हिम्मत ना हारने के लिए उक्तियों का सहारा लेना उचित है, पर ऐसी उक्तियों का नहीं जिनका खोखलापन आगे चलकर आदमी को इतना निराश कर दे कि वो कर्म पर ही आस्था खो बैठे। हमें संभव और असंभव का भेद जानकर ही जिंदगी जीनी होगी। कीचड़ को धो धोकर सफेद कदापि नहीं बनाया जा सकता, कुत्ता कभी आदमी नहीं बन सकता, केवल रेत से पक्की दीवार कोई नहीं खड़ी कर सकता, मूर्ख व्यक्ति का हृदय कभी चेत नहीं सकता भले ही उसे ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए। इसी प्रकार आसमान से तारे तोड़कर लाने का भी सही मतलब सब समझते हैं। हमें गीता का उपदेश मानकर कर्म अवश्य करने चाहिए, लेकिन दिशाहीन नहीं। हमें सफलता के लिए प्रयत्न अवश्य करने चाहिए, लेकिन विवेक शून्य होकर नहीं। हमें कदम बढ़ाने के लिए आशा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन असंभाव्य बातों के लिए नहीं। कोई उपकरण खराब हो जाने पर शुरू में बार बार सुधारा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब उसके सुधरने की आशा नहीं रह जाती और तब हम मोह त्याग कर उसे फेंक देते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ एक सीमा तक ही उपयोग में लाने के लायक रहता है, उसके बाद उसे खाना श्रेयस्कर नहीं रहता, लेकिन उससे स्वयं को बचाना आवश्यक हो जाता है। किसी पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में इतनी अधिक विपरीतता आ जाती है कि कितने ही सत्प्रयास करने पर भी उनमें समझौता संभव नहीं रह जाता। इसी कारण तलाक की व्यवस्था की गई है। यही बात किसी व्यक्ति की राक्षसी स्वभाव के बारे में है। राक्षस हर युग में रहे हैं और हर युग में रहेंगे। कहा जा सकता है कि उनके न सुधारे जा सकने में भी असंभव शब्द की सार्थकता निहित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां तक किसी के सुधार की सीमाएं और क्षमताएं हैं, वहां तक हम व्यक्ति में सुधार

0: व्यवहार अवश्य करें, लेकिन उसके बाद ये मानते हुए कि संसार में यदि पुण्यात्माओं का अस्तित्व है तो पाप आत्माएं भी अवश्यम भावी होंगी। गांधी जी के तीन बंदरों के समान सारी बुराइयों के प्रति अपनी आंखें, अपने कान और अपने मुंह बंद करके हम केवल अपना सुधार करें। सकारात्मकता की स्थापना के लिए हमें नकारात्मकता से आच्छादित इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अच्छाइयों के साथ बुराइयों की सत्ता भी स्थायी है और कुछ बीमारियों का इलाज असंभव है। इसी प्रकार हमें भविष्य के लिए अपने पैर मजबूत बनाए रखने के लिए इस तथ्य को और भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यद्यपि आशा पर संसार टिका है, तथापि आशा टूट जाने पर वो ढह नहीं जाता। इस विवेक से हमें संभावित निराशाओं की कड़वाहट को झेल पाने की शक्ति बढ़ेगी और हम अपने को बिना धोखे में रखे ये दोहरा सकेंगे कि यदि आदमी के लिए आशान्वित होना जरूरी है तो उसकी जिंदगी में निराशाओं का आना भी जरूरी है और उनका सामना करने के लिए उसमें शक्ति का रहना भी जरूरी है।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे वाचन स्वर संज्ञा टंडन का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। आईआईटी में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन 17 जुलाई से 24 जुलाई तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फीटर एवं इलेक्ट्रीशियन के रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admission.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 6:50 हुए हैं और अब कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं, आज सुबह 7:30 पर सेहत की बात कार्यक्रम में आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात का विषय होगा बाढ़ के समय ध्यान रखने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। डॉक्टर देवेंद्र सिंह से बातचीत करेंगी सुप्रिया भारतीयन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन एवं लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर रिंक रोड बिलासपुर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम माओ बच्ची, जिसमें होगी सामायिक चर्चा गुल्लक से बैंक तक। प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरी मोहदा रतनपुर के बच्चों की प्रस्तुति। 10:30 पर आप आनंद लेंगे नए तरानों का। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। 7:40 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। शाम की सभा की शुरुआत होगी प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट से। 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा में बेरा के गोट, जिसका विषय होगा प्राकृतिक खेती और हमर जीवन। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत आप सुनेंगे। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी और सामायिक सुझाव।

रात 8 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत में शंकर महादेवन के गीत। 8:15 पर हम हाजिर होंगे आपके साथ लेकर रजनीगंधा की महक। शाम 6:30 पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे कानून की बात। बीएनएस नए कानून के संबंध में जानकारी श्रीमती अश्लीन कौर बग्गा गोरख असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ जिला रायगढ़ से। शाम 5:35 और शाम 6:10 और शाम 7 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। शाम 5:05 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर और 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। शाम 6:05 पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

दोस्तों, तो आपको फिर बताते हैं, आज सुबह सेहत की बात कार्यक्रम में आप सुनेंगे आयोजित कार्यक्रम बाढ़ के समय ध्यान रखने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी बातें, डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सुप्रिया भारतीय की बातचीत।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।

0: एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि ओएमआर पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमम् अथवा एआई जनितानि ओएमआर पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिकपरिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं सीबीएसई संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः, उद्योगनेतारः, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगतास्सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित

0: करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका कार्यक्रम आज सुबह में। स्वीकार करें रेहाना का स्नेहिल नमस्कार और शुभकामनाएं आप सभी को एक

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज 19 जुलाई है और आज का यह दिन भारतीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण विशेष महत्व रखती है। एक ओर यह दिन वर्ष 1969 में देश के 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर यह महान क्रांतिकारी मंगल पांडे के जन्मदिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले बात करते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास के सामने अनेक चुनौतियां थी। बैंकिंग सेवाएं मुख्य रूप से शहरों और बड़े उद्योगपतियों तक सीमित थी।

ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बहुत कम थी। ऐसे समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को देश के विकास और आम जनता की जरूरतों से जोड़ना था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाएं गांव-गांव तक पहुंची, किसानों को कृषि ऋण मिलने लगे, छोटे उद्यमियों को व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ी। इस कदम ने भारत में वित्तीय समावेशन की मजबूत नींव रखी और बैंकिंग सेवाओं को जन सामान्य तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। श्रोताओं, 19 जुलाई का दिन हमें एक और महान व्यक्तित्व की याद दिलाता है। वर्ष 1827 में इसी दिन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिक थे, लेकिन अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और भारतीय सैनिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव से व्यथित थे। वर्ष 1857 में एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय की चर्बी इस्तेमाल किए जाने की खबर ने भारतीय सैनिकों में आक्रोश पैदा कर दिया। मंगल पांडे ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों का विरोध किया। उनके इस साहसिक कदम ने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगाई और आगे चलकर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई और आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। श्रोताओं, आज का यह दिन हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से ही नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से भी संभव होता है। एक ओर बैंक राष्ट्रीयकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, वहीं मंगल पांडे के बलिदान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को नई ऊर्जा प्रदान की।

आइए इस अवसर पर हम उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करें जिनके प्रयासों और त्याग ने भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण

0: अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

श्रोताओं, मानसून का मौसम अपने साथ राहत भरी फुहारें लेकर आता है, लेकिन कभी कभी यही बारिश कई तरह की परेशानियों और खतरों का कारण भी बन जाती है। जैसा इन दिनों ज़िले में पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश के से बनी परिस्थितियों के कारण हुआ।

0: जिससे कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई हैं। श्रोताओं, ये ज़रूरी है कि ऐसे समय में थोड़ी सी सावधानी हम बरतें ताकि बड़ी दुर्घटनाओं से हम और हमारे आसपास के लोग बचे रहें। श्रोताओं, बिजली सुरक्षा इन दिनों एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर सावधानी की आवश्यकता है। बारिश के दौरान बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और टूटे हुए बिजली के तारों से विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि कहीं कोई तार टूटा हुआ या ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई दे तो उसके पास बिल्कुल ना जाएं और तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दें। याद रखें, बरसात में पानी बिजली का सुचालक बन जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि कटे फटे तारों का उपयोग न करें, बिजली लाइनों के नीचे निर्माण कार्य न करें और ट्रांसफार्मर या बिजली से जुड़े उपकरणों को छूने से बचें। यदि किसी क्षेत्र में बिजली संबंधी समस्या दिखाई दे तो स्वयं सुधार करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें बल्कि संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। श्रोताओं, यातायात सुरक्षा भी इन दिनों एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर बारिश में जब जल भराव की स्थितियां बहुत सारे क्षेत्रों में निर्मित हो। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जल भराव वाले मार्गों से गुजरने से बचें, कम गति से वाहन चलाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। सड़क पर पानी भरा होने से गड्ढों का पता नहीं चल पाता जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस के निर्देशों का पालन करें और आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालक अधिक सावधानी बरतें और बारिश के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। श्रोताओं, बारिश का मौसम आनंद का मौसम है लेकिन सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को जल भराव वाले क्षेत्रों, बिजली के खंभों और खुले तारों से दूर रखें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभागों को इसकी सूचना दें। और श्रोताओं, आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: समय आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। मैं हूं कुमार शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बिलासपुर शहर में प्री बीएड एवं प्री डीएलएड की प्रवेश परीक्षा बड़े पैमाने पर होने जा रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा 35 परीक्षा केंद्रों में क्रमशः प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक अर्थात दो पालियों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 22,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। यद्यपि आज अवकाश का दिन रविवार है फिर भी एक साथ एक ही समय में विभिन्न वाहनों के साथ इतने लोगों के सड़क में आ जाने से शहर की यातायात व्यवस्था का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अतः इसी स्थिति से निपटने शहर में बड़ी संख्या में यातायात का बल तैनात किया जा रहा है। कई स्थानों में तमाम वाहनों को परिवर्तित मार्ग से भेजा जा रहा है। इसके साथ ही सभी परीक्षार्थियों से भी अनुरोध है कि कुछ दिनों से शहर में लगातार वर्षा हो रही है। संभव है कि जिस समय आप परीक्षा में शामिल होने जा रहे हों तब भी वर्षा हो सकती है जिससे परीक्षा में समय पर पहुंचने पर देर भी हो सकती है। इसलिए घर से कुछ जल्दी ही परीक्षा के लिए निकलिए। इसी प्रकार परीक्षा के समाप्त होने पर भी जब सभी एक साथ सड़क में होंगे तब भी संयम बरतें, धीरे चलें, कतार में चलें, ओवरटेक तो बिल्कुल न करें। सड़क में हर स्थिति में भी यातायात व्यवस्था संभाल रहे यातायात के जवानों के संकेतों का पूरी तरह पालन करें। मित्रों, हाल ही में शहर में एक ही दिन में हुई 16 इंच वर्षा से आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अधिकांश गली मोहल्ले घर सड़कों में पानी भर गया था जो अब धीरे धीरे उतर भी रहा है किंतु सड़कों में कीचड़ मलवा पड़ा है जिससे सहज ही वाहन चला पाना सहज नहीं है। पूरी सावधानी के साथ चलें, अत्यधिक कीचड़ मिट्टी में वाहन न चलाएं, कहीं भी गड्ढा हो सकता है, धोखा हो सकता है, दो पहिया वाहन चालक फिसल कर गिर भी सकते हैं। सड़क दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सड़क सुरक्षा पर तनिक भी लापरवाही

0: ही उचित नहीं है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, ट्रैफिक नियमों का पालन करने से ना हम स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं, इससे हम दूसरों के जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। और इसी विषय पर हमारी अगली चर्चा है। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तेजी से बदलती जीवन शैली और आधुनिक सुविधाओं के दौर में दोपहिया और चार पहिया वाहन हमारी दैनिक ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन इन सुविधाओं के बीच एक चिंताजनक प्रवृत्ति जो है वो आज तेजी से बढ़ रही है, वो है कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाना। अक्सर सड़कों पर स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार चलाते ऐसे किशोर दिखाई दे जाते हैं जिनकी उम्र अभी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की भी नहीं है। कई बार माता पिता स्वयं अपने बच्चों को वाहन सौंप देते हैं यह सोचकर कि उनका बच्चा समझदार है और वाहन संभाल सकता है, लेकिन एक क्षण की यह सोच कभी कभी जीवन भर के दर्द में बदल जाती है। सड़क पर वाहन चलाना केवल मशीन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी, धैर्य, समझदारी और परिस्थितियों के सही आकलन की मांग करता है। अचानक सामने आए खतरे, तेज गति से आते वाहन, खराब सड़कें या अप्रत्याशित परिस्थितियां, इन सब का सामना करने के लिए मानसिक परिपक्वता और अनुभव जरूरी होती है। नाबालिग बच्चों में यह अनुभव स्वाभाविक रूप से नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा वाहन चलाना स्वयं उनके और दूसरों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। हम अक्सर समाचारों में पढ़ते और सुनते हैं कि तेज रफ्तार बाइक चला रहे किशोर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई या स्कूटी चला रहे नाबालिग की वजह से किसी राहगीर को गंभीर चोट लग गई। ऐसी घटनाएं केवल आंकड़े नहीं होते, बल्कि किसी परिवार की टूटी हुई उम्मीदें, किसी माँ की आंखों के आंसू और किसी पिता की जिंदगी भर की पीड़ा होती है। इसी गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में कड़े प्रावधान किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों के अनुसार यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है या उसके द्वारा कोई यातायात नियम का उल्लंघन होता है तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को उत्तरदायी माना जाता है। ऐसे मामलों में 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। साथ ही वाहन का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। श्रोताओं, ये समझना जरूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति वाहन चलाने के लिए कानूनी रूप से पात्र और मानसिक रूप से सक्षम है। भारत में मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे पहले वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है। श्रोताओं, बच्चे हमारा भविष्य है। हम उन्हें अच्छी शिक्षा, बेहतर संस्कार और सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं उन्हें कम उम्र में वाहन चलाने की अनुमति देते हैं तो अनजाने में उनके जीवन को खतरे में डाल रहे होते हैं। बच्चों की जिद, दोस्तों की देखा देखी या सामाजिक दिखावे के कारण यदि हम उन्हें वाहन की चाबी थमा देते हैं तो यह केवल एक चाबी नहीं बल्कि एक संभावित जोखिम भी हो सकता है। एक जिम्मेदार अभिभावक की पहचान केवल बच्चे की इच्छाएं पूरी करने में नहीं बल्कि सही और गलत का अंतर समझाने में होती है। बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को बताएं और उन्हें यह समझाएं कि वाहन चलाने की भी एक उचित उम्र और कानूनी प्रक्रिया होती है। आइए हम सभी मिलकर एक सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें, संकल्प लें कि न तो स्वयं नाबालिगों को वाहन चलाने देंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारी थोड़ी सी सजगता किसी अनमोल जीवन की जान बचा सकती है।

सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। विषय है बाढ़ के समय ध्यान रखने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी बातें, डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन एवं लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर।

गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन एवं लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम स्वास्थ्य ही सुखी परिवार, सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। हमारा उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, रोगों की रोकथाम करना तथा प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य के

प्रति जागरूक बनाना है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत हम बिलासपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों के साथ मिलकर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, समय पर जांच, रोगों की शीघ्र पहचान तथा निवारक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत हैं। यकृत, लीवर एवं पाचन तंत्र के रोगों सहित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा तथा अनेक गंभीर बीमारियों की रोकथाम स्वस्थ जीवन शैली और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से ही संभव है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन एवं लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी बिलासपुर हर सप्ताह रविवार को सुबह 7:30 बजे स्वास्थ्य का एक बहुत जरूरी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है, सेहत की बात डॉक्टर के साथ। कल की बारिश जिसका इंतजार हम सभी को था, अच्छा तो लगा, लेकिन साथ साथ वो घनघोर बारिश ढेर सारी तबाही लेकर बिलासपुर आई। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो और लोग परेशान नहीं हुए हों। जो कुछ फिजिकल या भौतिक रूप से जो समस्याएं आई हैं हमारे जीवन में, वो तो बाढ़ के साथ आई ही, लेकिन बाढ़ के पानी के उतरने के साथ ही हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं का अब हमें सामना करना पड़ेगा। तो आज इसी संदर्भ में कि कौन कौन सी स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं जो बाढ़ के साथ आती हैं और बाढ़ के पानी के जाने के बाद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, इनके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से बाढ़ से कौन कौन सी स्वास्थ्य जनित समस्याएं पैदा होती हैं?
2: जी सुप्रिया जी, बाढ़ से एक बहुत ही विषम परिस्थिति जो पैदा होती है, उसका जो मूल कारण है वह है बहुत सारा जब जल इकट्ठा होता है, बह के आता है, तो साथ में अपने बहुत सारी गंदगी भी लेके आता है। अब आजकल सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारा जल अगर है, बहुत सारा पानी आया, बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, तो वो पानी सेप्टिक टैंक्स में भी घुस जाता है, नालों में भी जाता है, और वहाँ से ओवरफ्लो करते हुए फिर हमारे घरों के अंदर आता है, हमारे किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर तरफ आता है, हमारे घर के आसपास फैलता है। तो ये मान के चलिए कि जो गंदगी पहले हमने अलग करके रखी थी नालों में, सेप्टिक टैंक्स में, वो सारी गंदगी लौट के वापस हमारे घरों के अंदर घुस के आ गई। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हुई। सोचो उसके साथ कितनी सारी बीमारियों को लेकर हमारे घर के अंदर उसने प्रवेश किया है। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
1: सही बात है डॉक्टर साहब। जैसे आपने कहा कि ये जो गंदा पानी है, जो सेप्टिक टैंक और नाली और सीवरेज का था, वो मिल गया, सब तरफ से मिल गया, हो सकता है जमीन के अंदर रिस्क है, हमारे पीने के पानी के साथ भी वो जा रहा हो, मिल रहा हो, तो कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो इस समय अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं?
2: देखिए, ये आमतौर पे जो गंदगी होती है, मलमूत्र जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर बैक्टीरिया पनपते ही हैं, और ये बैक्टीरिया सारे हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कुछ वायरसेस भी होते हैं जो कि जॉन्डिस पैदा करते हैं। हेपेटाइटिस ए का वायरस, हेपेटाइटिस ई के वायरस ये पी लिया करेंगे
1: जी।
2: टाइफॉइड के बैक्टीरिया ये टाइफॉइड पैदा करेंगे। इसके अलावा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जो हमें आंत्रशोध, जिसको कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, ये पैदा करते हैं
1: जी जी।
2: तो ये तुरंत कुछ घंटों में से शुरू होके कुछ हफ्तों तक इसका असर देखने को मिलता है। तो अब ये सिम्टम कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से घिर गए हो बाढ़ के पानी में और आपके पानी के स्रोत भी कंटेमिनेट हो गए हैं, उनमें दूषित जल मिल गया है, और उन पानी का सेवन करते हो या आप अपने खाने पीने में या यूज में इसको लेके आते हो पानी को, तो जाहिर है ये सारे जो कीटाणु हैं किसी न किसी रास्ते अगर आपके पेट के अंदर पहुंच गए, तो इसके बाद तो ये आपके अंदर बीमारी पैदा करेंगे ही, और लक्षण भी तुरंत पैदा कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद भी पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और ये जो लक्षण अभी तुरंत ही पैदा होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे घातक संकेत कौन से हैं जिनके चलते हमको तुरंत चिकित्सकीय सेवा लेनी चाहिए?
2: देखिए, अगर आपको अचानक से उल्टी दस्त हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो ये आंत्रशोथ के शुरुआती लक्षण हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है और सेल्फ ट्रीट नहीं करना है, अपने आप इलाज घर में मत करिए। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ ORS का घोल पी लेते हैं या फिर कोई एक आध छोटी मोटी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन देखिए ये जो आपको इन्फेक्शन हुई है ये गंभीर इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत जगह का गंदा पानी आके मिला है आपके खाने के स्रोत में, पीने के स्रोत में, तो ये जो कीटाणु होंगे ये भयंकर होंगे, जटिल बीमारी पैदा करेंगे। इसलिए आपको घर पे नहीं बैठे रहना है और अपने आप इलाज इसका नहीं करना है, तुरंत आपको डॉक्टरी उपचार करवाना है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर वहाँ अपनी जांच करानी है और सही समय पे इलाज करा लेना है, इससे पहले की स्थिति बिगड़े। क्योंकि जो जवान होते हैं कई बार उनमें प्रॉब्लम होती है, इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें पहले से कुछ न कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की बीमारियां हैं, या कोई और बड़ी बीमारियां पहले से चल रही हैं, उनमें यही आंत्रशोथ जानलेवा भी हो जाता है कई बार
1: जी, जी, जी।
2: तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है इस समय।
1: और पानी के संदर्भ में हम अपने श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति जब पानी सब तरफ का

0: मिल गया है, तो हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना, अपना खाना और पानी कैसा हो?
1: हमारा पानी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए। अगर घर में आरओ है, फिल्टर है, तो वो करें, नहीं है तो उबाल के ठंडा करके पिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बाहर से पानी मंगाएं, जहाँ से साफ पानी मिल सकता है वहाँ से पानी मंगवा लें। और ये पानी तो सबसे पहली ज़रूरत है, और ये पानी ना सिर्फ आपको पीने के लिए उपयोग करना है साफ़ पानी, बल्कि अपने बर्तन धोने हैं, ये भी आप ध्यान रखें कि ये गंदे पानी से बर्तन आपने बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, क्योंकि अगर वहाँ भी पानी ख़राब है अपने इस्तेमाल किया है तो वो भी ऐसी ही बीमारियों को पैदा करेगा।
0: मतलब छोटी छोटी सावधानियां हैं, देखिए श्रोताओं, हमको उन सब का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सावधानियों का ध्यान रखकर यदि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि एक बार बीमार होते हैं तो जो खर्चा बैठेगा वो शायद इससे कई गुना ज्यादा होगा।
1: बिल्कुल, यहीं पर बहुत ही व्यवस्थित रहने की जरूरत है
0: जी।
1: और अब जैसे बाढ़ का, चलिए पानी निकल गया, उसके बाद और नई समस्याएं पैदा होंगी। आपके घर से तो पानी निकल गया बाढ़ का, लेकिन आसपास आपके घरों में पानी जमा है, वहाँ भी फिर जब मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया लेकर आएंगे, डेंगू लेकर आएंगे। ये बीमारियां कुछ दिनों के बाद आएंगी, कुछ हफ्तों के बाद आएंगी। ये भी आपने देखना है कि जब जब मौसम साफ हो जाता है, बाढ़ कम हो जाता है, बाढ़ का पानी की निकासी हो जाती है, पूरी तरह से अपने आसपास को व्यवस्थित रखना है, साफ रखना है, ताकि वो बाद में होने वाली प्रॉब्लम्स भी आप ना हो। इसके अतिरिक्त जो पानी घरों में आ जाता है, गंदगी वाला पानी, और उसकी सीलन बहुत दिनों तक रह जाती है, उस सीलन में मोल्ड्स पैदा होते हैं, फंगस पैदा होते हैं, उनमें से एलर्जन निकलते हैं, और वो जो एलर्जन एलर्जी करके अस्थमा को पैदा करते हैं। अगर पहले से अस्थमा किसी को है, दमे की बीमारी है, तो उसको और बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा बच्चों में, बुजुर्गों में निमोनिया तक पैदा होता है, ये भी बीमारियां होती हैं, तो उनका भी करना है, ख्याल रखना है। और जब अपने घर में जैसे बाढ़ छट जाए तो बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से जो भी सीलन है, सीलन के ऊपर जो भी काई जम जाती है उसको साफ करना है, मास्क लगा के साफ करना है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आगे भी घर में ये समस्या ना आए।
0: बहुत सही, और मेरे को लगता है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हम लेकर बहुत सारी इस तरह की काई और उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मच्छर से बचने के उपाय भी हम करें, मच्छरदानियां लगा के ही सोएं। तो मुझे लगता है ये सारी बातें हैं जो आराम से हम सब अपने मन में ध्यान में रखें, जागरूक रहें, तो हम आने वाले समय में स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय इतना ही है कि हम चाहेंगे बाढ़ के समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, एक बार आप हमारे श्रोताओं को बता दें कि वो सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखें।
1: देखिए, साफ पानी का सेवन करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, गंदे पानी में जाएं नहीं, क्योंकि गंदे पानी में भी जानवरों का जो पेशाब मिला होता है उससे भी बीमारियां फैलती हैं। और अगर आप गंदे पानी में जाते ही हैं तो तुरंत आके हाथ पर अच्छे से साबुन पानी से धो लें, आसपास पानी जमा ना होने दें, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। और घर जो गंदा हो गया उसको अच्छे से साफ रखें ताकि बीमारी ना फैले।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच थे इस अंचल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन एवं लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर।

हम सभी से आग्रह करते हैं कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तंबाकू एवं अत्यधिक शराब से दूर रहें, मानसिक तनाव को नियंत्रित रखें तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दें। स्वस्थ जीवन की दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम भविष्य में बड़े परिवर्तन का आधार बनता है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहाँ रोगों की रोकथाम को उपचार जितना ही महत्व मिले और प्रत्येक परिवार स्वस्थ, सुखी एवं सुरक्षित जीवन जी सके। आपका स्वास्थ्य हमारी साझा जिम्मेदारी है और आपकी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा। आइए मिलकर बिलासपुर को अधिक स्वस्थ, अधिक खुशहाल और अधिक सशक्त।

0: 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल और आडी बर्मन का संगीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: जुड़ जाइएगा।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में

0: तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली विमनई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर

0: जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनी का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्मोहन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी, एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी, लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे।

0: दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़, निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट कन्वीन्स ऑल पार्टी मीटिंग टुडे अहेड ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिनिंग टुमारो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉर्न्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट सबमिटिंग फेक और एआई जनरेटेड OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Sri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores a growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
2: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker.

0: माटी के स्वर कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। आओ आवा कार्यक्रम ला करी शुरू। पहले गीत हमन लेवत हन एकर फरमाइश भेजैया हमार श्रोता संगवारी मन हावे नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज एमन हावे लुतरा खमरिया ले दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हवे नोखेलाल वर्मा हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा ग्राम रसेड़ा अकलतरा ले हवे मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या डिकेश कुमार साहू वासु डॉली पूर्वेश साहू और एक संग महादेव घाट अमलेश्वर ले हवे डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तानी सूरज सुजला ज्योति रियांश और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले हवे द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा दतरेंगी भाटापारा ले हवे नोखेलाल वर्मा हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। तो हमारे श्रोता संगवारी मन के पसंद के आवाज सुनी कार्यक्रम के पहली गीत।
1: करिया करिया बादर घपटे चले पवन पुरु

फरमाइश भजैया, अमर श्रोता संगवारी मन हावें इंदिरा नगर रायगढ़ ले शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन अब्दुल जमीन मोहम्मद अलीम आसिफ नईम राजा भगत राम पटेल केशव पटेल किशन पटेल सोनम पटेल मानी पटेल हावें सिंगारवाड़ी ले और किशन पटेल सोनम पटेल मानवी पटेल सिंगारवाड़ी भाटापारा ले हावें दान सिंह रावत पद्मनी रावत शुभम सौरभ रावत और दतरंगी भाटापारा ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक बेदबाई सुमिता योगिता पालेश्वरी शांति नगर भाटापारा ले हमें मिलोक दास कुलदीप संतोष दास संदीप दास अजीत दास कुलदीप बिरछा संजना और लक्की कावा सुनिए हमारे जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के एक गीत ला दिला गाय हमें केदार यादव

પંચરામેઘા ઔ કુલવંતીનબાઈ કે ગાય સુઘર ગીત કે પાછું આવા એકઠનો ગીતલા સુની ઔ એ ગીતલા સુને બર હમન લા પત્ર ભેજૈયા હમર શ્રોતા સંગવારી મન હવે પીપરપારા પાલચુઆ મુંગેલી લે ઉત્તરા કુમાર દિવાકર પરમેશ્વરી દિવાકર યોગિતા દિવાકર નીતિન વંશિકા દિવાકર ઔ ભગતરામ પટેલ કિશન પટેલ સોનમ માનવી એ મન હવે સિંગારબાડી લે चांदनी चौक गंडई पंडेरिया ले हमें पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और यहीं ले हमें खुशी रौनक सेन और अकलतरा ले हमें दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल अकलतरा बलौदा ले ये पत्र मन भेजे हमें और भाटापारा ले हमें मिलो मानिकपुरी संतोष संदीप अमित लक्की औ बिरजा मानिकपुरी संजना संगीता अंजलि औ नेहरू भाटा वार्ड भाटापारा ले हमें प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र साहू मोहन पारा कलतरा ले अभिनव साहू अभिषेक साहू औ उमा देवी साहू दतरंगी ले हमें भागवत वर्मा लेवाई ले गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर ले विश्वनाथ साहू चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू ता हमारे जम्मो श्रोता संगवारी मन के पसंद के एक गीत ला आवाज सुन ली ही एक गीत ला पाए हैं साधना मरावी।

डॉली और प्रवेश। मंगला मटिया बालोदले हमें शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रैंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे और ग्राम भरी टोला डोंडी बालोदले हमें नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम, बाजार पारा टेमेत्राले भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा और ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंदेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। दावा हमारे जम्मू श्रोता से हमारे मन के पसंद के गीत लव

छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 9 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए हर्षित सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाजों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना समीर अनजान है। गीतकार और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

रोज रोज तुझे पहले जाएगी क्लब डिस्को में डांस करने, कहेगी कहेगी बेबी टेक मी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, रोमांस करने, रोज रोज तुझे कॉलेज जाएगी क्लब डिस्को में डांस करने, कहेगी कहेगी बेबी टेक मी फॉर

0: यहाँ पे कोई क्राइम है?
1: जब कोई इसे मिल जाएगा, हॉट हैंडसम पैसे वाला लड़का, इंटरेस्ट उसे में दिखाएगी, बोलेगी बोलेगी तुझे हट कड़का। जब कोई इसे मिल जाएगा, हॉट हैंडसम पैसे वाला लड़का।

दोस्तों, आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे और ऋण सुविधा मुख्यतः बड़े उद्योगों एवं संपन्न लोगों को ही प्राप्त होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बहुत कम थी, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में बैंक शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार और गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध होने लगा। महिलाओं, विद्यार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिली। अपने आप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज़ों में राबता फिल्म का गाना सुनवा रहा हूँ। कुमार के हैं बोल और सोहराबुद्दीन की तर्ज़।

सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार हैं अमजद नदीम।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: भी है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाज़ों में दुकान फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा थे गीतकार और संगीतकार थे श्रेयस पुराणिक। अभी आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से। आवाज़ हैं शशि और डीजे खुशी की गगन आहुजा के बोल और शशि डीजे खुशी की तर्ज़।

0: श्रोताओं नमस्कार। हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आ जरा आ जरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं, वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: सरकार की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनके फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते, उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से

दुनिया के चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

दिल्ली पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी, तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ है।

मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।

नीरज की भाव भरी पार्टी देवानंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देवानंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द न आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देवानंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देवानंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द रंगीला।

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

नीरज ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुँचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र

तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपने कलम से कहते हैं जिसकी हूक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

नीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

भाव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 9:55 हुए हैं और अब रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक

0: यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीबीएसई ने कक्षा दसवीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा दसवीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा दसवीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शनिवार को रायपुर में आयोजित विशेष लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत 847 चेक बाउंस के प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके लिए रायपुर जिला न्यायालय में 19 विशेष खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें लगभग 1800 मामलों को रखा गया। विशेष लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के 172 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूर्व प्रबंध संचालक अरुण प्रतीत त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। अरुण गिरफ्तारी की कार्रवाई 17 जुलाई को की गई। जांच एजेंसी ने शनिवार को अरुण प्रतीत त्रिपाठी को विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में सहायक कमांडेंट के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। दो पालियों में आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बलरामपुर जिले में कल हुई लगातार बारिश के बाद कन्हर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। रामानुजगंज स्थित एनीकट के ऊपर से करीब 1 फीट पानी बह रहा है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने एहतियात के तौर पर एनीकट के दोनों गेटों में ताला लगा दिया है। प्रशासन ने लोगों से कन्हर नदी के किनारे और एनीकट के आसपास नहीं जाने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई सत्र ODL पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि को 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। क्षेत्रीय निदेशक डॉ गौड़ा राजेंद्र ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों में उपलब्धता के आधार पर विषय का चुनाव कर सकते हैं। बस्तर के नगरनार थाना पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना निवासी यह आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर रायपुर ला रहा था। जब्त गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई गई है। श्रावणी मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 1 से 30 अगस्त तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चापा और रायगढ़ समेत प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले

सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों, प्रस्तुति लिंटा मनोज की।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार और स्वागत आपके फेवरेट प्रोग्राम आओ बच्चों में। बच्चों अभी सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तब बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस यानी बैंक नेशनलाइजेशन डे के बारे में पढ़ा, जिसे कि हर साल आज के दिन 19 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को आम जनता तक पहुँचाना है। और सरल शब्दों में यदि हम कहें तो बैंक वो जगह है बच्चों जहां हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपके पास गुल्लक है? हमारे बहुत से साथियों का जवाब होगा हाँ। किसी बच्चे के पास मिट्टी का गुल्लक होगा, किसी की रंग बिरंगी प्लास्टिक वाली गुल्लक, या फिर किसी के पास कार्टून या स्टिकर वाली गुल्लक होगी, है ना बच्चों? और जब भी आपको दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा या कोई अन्य परिवारजन उपहार के रूप में पैसे देते हैं तो आप उसे गुल्लक में डाल देते होंगे और उनमें कभी सिक्का कभी नोट जमा होता रहता है। और फिर एक समय ऐसा भी आता होगा जब आपका गुल्लक पैसों से भर जाता है। इस तरह से बच्चों एक छोटी सी गुल्लक बचपन से ही आपको बचत की आदत सिखाती है। बच्चों कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपकी गुल्लक पूरी तरह भर जाती है और आप सोचते हैं वाह इतने पैसे, इनका मैं क्या क्या करूंगा या करूंगी, है ना? बस हमारी आज की चर्चा भी आपसे इसी बात पर है और वो है गुल्लक से बैंक तक। जैसा कि हम बातें कर रहे थे कि गुल्लक भरने के बाद अब क्या करें, क्या सारे पैसे एक ही दिन टॉफी चिप्स या खिलौनों में खर्च कर दें या कोई अपनी मनपसंद अन्य चीजें खरीद लें, ऐसा अक्सर आप सोचते होंगे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों समझदारी यही है कि पहले आप सोचें आपको क्या इन चीजों की जरूरत सच में है या सिर्फ आपका मन कर रहा है। और यही सोच बच्चों एक अच्छी सेविंग्स की आदत की शुरुआत भी है। मान लीजिए यदि आपके गुल्लक में 500 रुपए हैं तो आप क्या करेंगे, सब पैसे एक साथ खर्च करेंगे या कुछ बचा कर रखेंगे? बहुत से नन्हे साथियों का जवाब होगा पूरे पैसे तो नहीं लेकिन कुछ पैसों को जरूर खर्च करेंगे। बिल्कुल कीजिए बच्चों कुछ पैसों को खर्च, लेकिन बचे हुए पैसों का भी सही उपयोग कीजिए। और इसके लिए भी एक आसान उपाय है और वो है 50-30-20 का नियम। आइए मैं आपको समझाती हूँ। इस नियम के अनुसार बच्चों आपके पास जितने भी पैसे हैं उसमें से 50% पैसे आप अपनी किसी जरूरी चीज पर खर्च कर सकते हैं, 30% पैसे अपनी पसंद की कोई ऐसी चीज में आप खर्च कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, और जो बचा हुआ 20% पैसों का भाग है उसे या तो गुल्लक में रखें या फिर मम्मी पापा के साथ जाकर आप बैंक में जमा कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों समझदार बच्चा वही है जो हर इच्छा पूरी करने से पहले ये सोचता है कि क्या ये जरूरी है, और साथ ही अपनी बचत का कुछ हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए संभाल कर रखता भी है। इसलिए बच्चों पैसों का उपयोग सही तरीकों से करना सीखें आप सभी। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं तो सबसे पहले बच्चों उसमें से 500 रुपए आप अलग रख लीजिए। इन पैसों से आप अपनी जरूरत की चीजें जैसे किताब, कॉपी, स्कूल बैग, कलर पेंसिल या कोई ऐसी चीज जो आपको कुछ नया सीखने में मदद करती है, गेम्स वगैरह जैसे कि, उन्हें आप खरीद सकते हैं। और अब आपके पास जो 500 रुपए बचे थे उसमें से आप 300 रुपए को अलग अपने पास रख लीजिए। ये पैसे आपकी

0: छोटी छोटी खुशियों के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा खिलौना, कोई अच्छी सी आइसक्रीम या चॉकलेट जिसे कि आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकें, इस प्रकार की कोई भी आपकी पसंद की चीज बच्चों। और इस प्रकार अब आपके पास 1,000 रुपयों में से 800 रुपए खर्च होने के बाद बचते हैं 200 रुपए, है ना। इन पैसों को अब या तो आप वापस अपने गुल्लक में डाल दीजिए या फिर जैसा कि हमने आपसे कहा मम्मी पापा के साथ बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं। सोचिए बच्चों, यदि हर बार आप बचे हुए पैसों को जमा करते रहेंगे तो कुछ महीनों के बाद आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप उससे अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जैसे कि साइकिल या कोई सीखने वाला इंस्ट्रूमेंट वगैरह। और बच्चों, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि गुल्लक हमें बचत करना सिखाती है, लेकिन यही बचत जब थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो तब उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक एक बेहतर जगह होती है। बच्चों, क्या आप कभी मम्मी या पापा के साथ बैंक गए हैं? वहां पर बड़ी बड़ी खिड़कियां, काउंटर, पासबुक, पैसा जमा करने वाले और निकालने वाले बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जो कि आपको रोचक लगा होगा। बच्चों, बैंक में हम अपना बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, बैंक आपकी जमा राशि पर ब्याज भी देता है, यानी आपके पैसे धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं। जानते हैं बच्चों, केवल बड़े लोग ही नहीं लेकिन आप छोटे बच्चों का भी बैंक में खाता हो सकता है, जिसमें 18 वर्ष की आयु से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके नाम से माइनर अकाउंट खोला जा सकता है, जो कि आपके मम्मी पापा की देखरेख में आप खुलवा सकते हैं। यही नहीं, कई ऐसे बैंक भी हैं जो कि 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अपनी नीतियों के अनुसार खुद का अपना सेविंग्स अकाउंट संचालित करने की अनुमति भी देते हैं। और इन सारी बातों से संबंधित जानकारी आप बच्चों अपने मम्मी पापा के साथ नजदीकी बैंक जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, गुल्लक हमें बचत की आदत सिखाती है और बैंक हमारी बचत को सुरक्षित रखता है। और आपकी समझदारी इसमें है कि आपको पैसा कब खर्च करना है और कब बचाना है। हमें विश्वास है हमारी बताई बातों पर अमल आप सभी जरूर करेंगे। और आइए अब अपनी चर्चा को विराम देते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। बच्चों, अपनी प्यारी प्यारी बातों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से हमारे इस सफर को बेहतरीन और शानदार बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहदा पोड़ी रतनपुर के बच्चे। तो चलिए इनसे जुड़कर शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला।
1: सुप्रभात नन्हे मित्रों, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पोड़ी से श्रीमती कविता ठेठवार, सांस्कृतिक प्रभारी। सराई सागौन और पलाश के वृक्षों के बीच है यह स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ी है पूर्ण विकसित। 7 एकड़ में फैला है हमारे स्कूल का परिसर, जहां ज्ञान की धारा बहती है निर्झर। साफ सफाई और उच्च तकनीकी व्यवस्था है स्कूल की पहचान, और यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में अव्वल आकर बढ़ाते हैं स्कूल का मान। शिक्षक यहाँ देते हैं हर विषय की जानकारी और कराते हैं जीवन के हर मुश्किलों से निपटने की तैयारी। उज्जवल भविष्य की यही है उड़ान, हमारा स्कूल है हमारा अभिमान। जी हाँ, ये विद्यालय है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पोड़ी मोहदा रतनपुर। हमारे सुनने वाले सभी श्रोतागण को अंत में मैं बताना चाहूंगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में हमें सहयोग प्रदान किया शाला के प्राचार्य श्री विनोद कुमार कौशिक जी और हमारे शाला के अध्यापक श्री अभय कुमार साहू जी।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों, अरविंद साहू हमें जस गीत सुनाएंगे, और अरविंद कक्षा 9वीं के छात्र हैं।
2: तरसथे नैना दाई तोरे दरस बर, तरसथे नैना दाई तोरे दरस बर, आके मोला दरस दिखाई दे। ओ मैया ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे, ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे, तरसथे नैना दाई तोरे दरस बर, तरसथे नैना दाई तोरे दरस बर, आके मोला दरस दिखाई दे, ओ मैया ओ मैया ओ मैया।

झूप माहूला ना चाई दे, ओ मैया झूप झूप माहूला ना चाई दे, ढोल नंगारा मांदर बाजत है, सेवक भैया मन तोर सेवक गावत है, ढोल नंगारा मांदर बाजत है, सेवक भैया मन तोर से

0: जोत जलथे दाई तोरे घरो घर ममता थोड़ी क बरसाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। तरसथे नैना दाई तोरे दरस भर तरसथे नैना दाई तोरे दरस भर आके मोला दरस दिखाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। बड़े माया रुते तो तीन दया के अपन भगत के वो घर खोली खाली। बड़े माया रुते तो तीन दया के अपन भगत के वो घर खोली खाली। चुन्नी चढ़ावा मैया मैं तो लाली लाली सुन ले गुहार मोरे माता से रवाली। चुन्नी चढ़ावा मैया मैं तो लाली लाली सुन ले गुहार मोरे माता से रवाली। दया देखा दे दाई अब तो मोरे बर दया देखा दे दाई अब तो मोरे बर सपना ल मोर सजाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। ओ मैया झुप झुप माहूला नचाई दे। धन्यवाद।
1: आइए बच्चों अब हम जुड़ते हैं शालू केवर्थ से। शालू कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: दीदी मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
1: और शालू आप हमें क्या सुना रहे हैं?
2: दीदी मैं हमारे दोस्तों को प्रकृति पर केंद्रित एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी।
1: सुनाइए।
2: प्रकृति कहती आओ मानव मुझसे फिर से नाता जोड़ो स्वार्थ की इस अंधी दौड़ में मेरा आंचल मत यूं छोड़ो। मैं ही पर्वत मैं ही नदियाँ मैं ही वन की हरियाली हूँ फूलों की मधुर मुस्कानों में जीवन की रखवाली हूँ। मैं ही सावन की फुहारें मैं ही कोयल की तान हूँ मैं ही मिट्टी की सौंधी खुशबू मैं धरती की पहचान हूँ। जब जब तुमने वृक्ष काटे सूख गई जीवन की धराएं धुआं उठा जब कारखानों से रो पड़ी निर्मल हवाएं। मत छीनो मेरा सौंदर्य मत तोड़ो मेरा विश्वास मैं ही जीवन मैं ही कल हूँ मुझसे ही हर एक सांस। आओ मिलकर यह प्रण लें हर आंगन में वृक्ष लगाएंगे जल जंगल और जीव बचाकर धरती माँ का मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
1: और अब हम बात करते हैं रिया जायसवाल से। रिया आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं?
3: मैं 9वीं में पढ़ती हूँ दीदी।
1: अच्छा रिया क्या सुना रहे हैं आप?
3: दीदी आज मैं हमारे दोस्तों को हमारे गांव पौड़ी के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। दोस्तों कहते हैं कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। गांव केवल मिट्टी खेतों और घरों का समूह नहीं बल्कि हमारी संस्कृति परंपराओं लोक जीवन और मानवीय मूल्यों के जीवंत केंद्र है। इसी बात को सोचते हुए आज मुझे बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं आप सभी को अपने गांव के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूं। दोस्तों मेरे गांव का नाम पौड़ी है। यह बिलासपुर जिले से 33 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक सुंदर शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये महामाया की नगरी रतनपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमारे गाँव की कुल जनसंख्या 3500 है और इसका क्षेत्रफल लगभग 609 हेक्टेयर है। आप सभी को बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारे गांव की प्रथम नागरिक यानी वर्तमान सरपंच श्रीमती सावित्री बाई राज हैं। गांव के अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं। उपजाऊ भूमि मेहनती किसान और प्रकृति की सुंदरता हमारे यहां की जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों धान गेहूँ तिवरा बटुरा चना मसूर सूरजमुखी और अन्य सभी मौसमी सब्जियां यहाँ की समृद्धि का आधार है। साथ ही वनों से प्राप्त अनेक वनोपज जैसे कि चार तेंदू महुआ बबूल का गोंद सरई कौसम

0: तिलवा, बोहार, ये सारी ही चीजें ग्रामीण और वनाश्रित समुदाय के लिए आजीविका का प्रमुख आधार हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, हमारे गांव के ग्राम देवता ठाकुर देव और ठकुराइन दाई है, जिनके प्रति हम प्रत्येक ग्रामीण के अटूट श्रद्धा और आस्था है। दोस्तों, प्रति 3 वर्ष में बिदरी, जो ठाकुर देव की पूजा अर्चना का पर्व है, वो पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गांव में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व हरेली, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, वो हम सभी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारे गांव में सिद्ध बाबा मुनि का आश्रम भी है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि इनकी कृपा से ही हमारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा, हमेशा बारिश होती है। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा हमारे गांव की पहचान मंगला गौरी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसी धार्मिक आस्था के कारण हमारा गांव पौड़ी विशेष पहचान रखता है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, मुझे अपने गांव पर गर्व है। धन्यवाद।
1: आइए बच्चों, जुड़ते हैं कृतिका यादव से। कृतिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: दीदी, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
1: क्या सुना रही हैं कृतिका?
2: आज मैं हमारे दोस्तों को कहानी सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है हरित धरा हमारा साझा दायित्व।
1: सुनाइए।
2: दोस्तों, मेरी कहानी केंद्रित है सुंदर वन के बारे में, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते हैं। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी, पंछी आकाश में तरह तरह की उड़ाने भर रहे थे। मोर रंग बिरंगे पंख फैलाए ठुमक ठुमक कर नाच रहा था। खरगोश हरी भरी घास में चहलकदमी कर रहा था। हिरन दौड़ते भागते जंगल में खेल रहे थे और बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे थे। कल तक जंगल में मंगल था, पर आज जंगल खामोश है। सब चुप सान बैठे, चेहरे में डर और सब गुमसुम। क्यों? क्योंकि खबर फैली थी कि कोई आ रहा है, पर ऐसा कौन आ रहा है? आखिर हंस से रहा नहीं गया, उसने हिरण से पूछा, कौन आ रहा है? हिरण ने कहा, पता नहीं, मुझे तो खरगोश ने कहा कि वह आ रहा है और आने से हम सब मारे जाएंगे। जब से सुना है जान निकल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम दोनों खरगोश के पास गए और पूछा कि कौन आ रहा है। खरगोश ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मुझे तो हाथी दादा ने बताया। अब सब मिलकर हाथी दादा के पास गए। हाथी दादा को भी नहीं पता था कि कौन आ रहा है, उन्होंने तो जंगल के राजा से सुना था। अब सब जंगल के राजा शेर के पास पहुँचे तो शेर गब्बर सिंह तो भागने की तैयारी कर रहा था। गब्बर सिंह ने कहा कि मुझे तो शहर से आने वाले बंदर ने बताया कि वह आ रहा है और सब मारे जाएंगे। यह सुनकर सब बंदर के पास गए और पूछा, भाई कौन आ रहा है? क्या भूकंप आने वाला है? क्या बाढ़ आने वाली है? क्या जंगल में आग लगने वाली है? या आसमान फटने वाला है? यह सब सुनकर बंदर ने ना में सिर हिलाया तो कौन आने वाला है? तब झल्लाते हुए सभी ने पूछा। बंदर ने कहा, इंसान आ रहा है, इंसान आ रहा है। सबके दिल भय से धड़क उठे और सबने एक दूसरे की तरफ दुख भरी नजरों से देखा। इंसान आ रहा है, इंसान आ रहा है, अब हम सब मारे जाएंगे। साथियों, यह जंगल की कहानी थी, लेकिन इसमें छुपी कड़वी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जंगल एक पूरी व्यवस्था है, जिसे केवल एक से खतरा है और वह है इंसान। आइए हम सब मिलकर यह प्रण ले कि इंसान और जंगल के बीच संतुलन को बनाए रखे और जरूरत से ज्यादा जल संसाधनों का दोहन न करे, उन्हें उनके घर यानी जंगलों में रहने दे। धन्यवाद।
1: चलिए अब हम जुड़ते हैं टिकेश साहू से। टिकेश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: दीदी, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: और टिकेश, आप क्या सुना रहे हैं?
3: दीदी, मैं अपने दोस्तों से कुछ पहेलियाँ पूछना चाहता हूँ।
1: बच्चों, आप सभी तैयार हैं?
4: जी दीदी, हम तैयार हैं।
1: ठीक है टिकेश, पूछिए।
3: दोस्तों, बताइए इस पहेली का उत्तर। मैं एक शहर भी हूँ और सब्जी भी। मैं एक शहर भी हूँ और सब्जी भी। मेरे नाम में ठंड का एहसास भी है और मसाले की खुशबू भी। बताइए मैं क्या हूँ? दोस्तों, तो कौन बताएगा इसका उत्तर?
4: मैं बताऊँ।
3: ठीक है प्रीति, आप बताइए।
5: टिकेश, मैं एक शहर भी हूँ
6: और सब्जी भी,
5: बड़ा ही सुंदर और

0: पहली है, इसका उत्तर है शिमला मिर्च।
1: सही उत्तर है प्रीति। दोस्तों एक और पूछूं?
2: हाँ हाँ पूछिए।
1: तो बताइए दोस्तों, नभ की गोद से जन्म मैं पाती, धरती से मिलने दौड़ी आती, ना मैं मोती हूँ ना कोई हार, फिर भी मेरा होता सत्कार, सूखी धरती को हंसा देती, बताओ मैं कौन कहलाती।
2: मैं बताऊं।
1: ठीक है अक्स, आप बताइए।
3: टिकेश, इस पहेली का उत्तर ओस की बूंद है क्या?
1: नहीं नहीं अक्स, गलत उत्तर है।
2: मैं बताऊं।
1: ठीक है अरविंद, आप बताइए।
4: टिकेश, इस पहेली का उत्तर है बारिश की बूंदे।
1: सही उत्तर अरविंद, थैंक यू।
5: आइए बच्चों, अब हम जुड़ते हैं कामिनी मरकाम से। कामिनी, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं?
6: दीदी, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
5: और क्या सुना रही हैं आप?
6: दीदी, मैं हमारे दोस्तों को कुछ दोहे सुनाऊंगी।
5: सुनाइए।
6: दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। इनके ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी समस्त जीवों के हित हेतु कार्य है। इसी से संबंधित कुछ दोहे मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। जल जंगल अरु जीव से सजती धरा महान, इनको जो सम्मान दे वही सच्चा इंसान। तरवर छाया बांटते मांगे नहीं प्रतिदान, सेवा करना सीख लो यही प्रकृति का ज्ञान। वन है धरती के हृदय, वृक्ष धरा की श्वास, इनके बिन जीवन नहीं यह अटल विश्वास। नदिया माँ की गोद सी निर्मल जिनकी धार, उनको मैं लजो करे उसका जीवन भार। एक बिरवा रोपिए बन जाएगा वनराज, छोटी सी है साधना धरती का है ताज। लोभ बड़ा जब मानव का सुने हुए विहान, वृक्ष जीव सब रो पड़े घटे वन और प्राण। धरती माँ की गोद में जीवन का विस्तार, हरियाली की मान ही है मानव का संस्कार। धन्यवाद।
5: आइए बच्चों, अब हम जुड़ते हैं प्रीति नेताम से। प्रीति कक्षा 7वीं में पढ़ती हैं और अपने विद्यालय पौड़ी के बारे में हम सभी को जानकारी देंगी।
7: दोस्तों सुप्रभात, मैं आप सभी को हमारी शाला के बारे में बताना चाहूंगी। दोस्तों, हमारा स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी विकास खंड कोटा तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर में स्थित है। पौड़ी संकुल केंद्र के अंतर्गत एक हायर सेकेंडरी स्कूल, 6 प्राथमिक शाला, 3 माध्यमिक शाला संचालित है। हमारे विद्यालय में वर्तमान में छात्र दर्ज संख्या 275 है। दोस्तों, इस विद्यालय में आसपास के गांव मोहंदा, तिलकडी, डोंगी, दोना सागर, नवागांव, बछाली खुर्द, जमुनाही, लालपुर से बच्चे पढ़ने आते हैं। दोस्तों, स्कूल की स्थापना 1995 में हुई थी। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, स्वच्छता अभियान तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का भी नियमित आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय में शिक्षा का ऐसा वातावरण है जहां प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलता है। और अंत में मैं हमारे सभी दोस्तों की ओर से अपने सभी शिक्षकों और प्राचार्य जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू।
5: कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं बच्चों फिजा परवीन। फिजा कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं और फिजा आप सभी को जल संरक्षण एवं जीवन का संरक्षण इस पर रोचक जानकारी देंगी।
8: दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष लघु भाषण लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है जल संरक्षण जीवन का संरक्षण। प्रिय साथियों, जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के प्राणों का आधार है। जिस प्रकार शरीर में रक्त का प्रवाह जीवन बनाए रखता है, उसी प्रकार धरती पर जल का प्रवाह जीवन को गतिमान रखता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम जल को उसका उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। नदियां प्रदूषित हो रही है, भूजल का स्तर निरंतर घट रहा है और वर्षा के जल का पर्याप्त संरक्षण नहीं हो पा रहा है। यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। इसलिए हमें वर्षा जल संचयन को अपनाना होगा, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखना होगा और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें।

0: जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं बहाएंगे और समाज में जल संरक्षण का संदेश फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: बच्चों, अब आ रही हैं मोनिका शामले और मोनिका कक्षा सातवीं में पढ़ती हैं। मोनिका, क्या सुना रही हैं आप?
2: दीदी, हर साल कल यानी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। उसी से जुड़ी रोचक जानकारी अपने दोस्तों को देना चाहूंगी।
1: जरूर मोनिका, सुनाइए।
2: दोस्तों, 20 जुलाई सन 1969 को मानव इतिहास में पहली बार अपोलो 11 मून लैंडिंग के दौरान इंसानों ने चंद्रमा पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने, ये आप सभी जानते भी होंगे। इसी उपलक्ष्य में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग का कथन आज भी याद किया जाता है। वे कहते हैं, यह एक इंसान का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। आइए आपको चंद्रमा से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताती हूँ। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर वातावरण यानी कि हवा लगभग नहीं होती है, इसलिए वहाँ आवाज़ सुनाई नहीं देता है। दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग एक छठा भाग होता है। दोस्तों, चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता। दोस्तों, हमारे देश भारत में भी चंद्रमा की खोज में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इस तरह से दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि चांद सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं बढ़ाता, लेकिन हमें यह भी सिखाता है कि विज्ञान, जिज्ञासा और मेहनत के दम पर इंसान भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। थैंक यू।
1: कार्यक्रम के अंत में बच्चों, अक्ष कुमार साहू हमें गीत सुनाएंगे, चंदा चमके चमचम।

खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो, पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा, कपड़ा हा हा हा हा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। धन्यवाद
1: बच्चों, ये सुंदर और लाजवाब प्रस्तुति थी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहदा पोड़ी रतनपुर के बच्चों की। उम्मीद है इनकी प्रस्तुति और कार्यक्रम का लुत्फ आप सभी ने जरूर उठाया होगा। आप हमें पत्रों के द्वारा बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। पिन नंबर है 4950।

0: 06 आप हमें पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर भी मेल्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। और बच्चों, आपको बताना चाहेंगे कार्यक्रम में प्रस्तुति एवं संयोजन मोनाली ठाकरे की। और अब दीजिए आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों अभी आप सुन रहे थे प्रस्तुति लिंटा मनोज की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ है। और एक सूचना सुनिए, आईटीआई में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन 17 जुलाई से 24 जुलाई तक। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टोनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फीटर एवं इलेक्ट्रीशियन के रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admission.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर च्वाइस फिलिंग में संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं नए तराने। यदि सुनिए कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म दिल्ली 6 से।

फिल्म सरबजीत का ये गीत शफकत अमानत अली की आवाज़, अराफात महमूद के शब्द और तनिष्क बागची का संगीत। और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत हमने लिया है फिल्म इश्क यार से।

इश्किरिया फिल्म का ये गीत शफकत अमानत अली की आवाज़ और इस गीत के साथ ही क्रम नए तराने का समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11

0: बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत।
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है।
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी,
0: जी
1: क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है। हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: छायो।
1: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना

0: का मैं नाम ले लूं तो, अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
1: क्या बात है।
0: हम इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश छलके इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है,
1: जी
0: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता है।
1: बिल्कुल, रोमांचित हो जाता है और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे
0: जी
1: सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
0: अब यहाँ एक और बात मैं करूंगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहां एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है।
1: कमर जलालाबादी की वो रचना,
0: आप बताइए
1: क्या
0: मुझे
1: बात है, वाह।
0: कितना कंट्रास्ट है।
1: हाँ?
0: आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने
1: हाँ?
0: रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
1: क्या बात है।
0: मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है। देखिए आप, वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता है वो।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को, 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के।
0: जी
1: और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी। और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया, उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण।
0: जी मनीषा जी,
1: जी
0: मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी माड़गुड़कर
1: जी
0: इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि,
1: जी जी
0: मराठी
1: जी
0: साहित्य में
1: जी
0: बड़े सम्मानित कवि हैं, इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया, और फड़के साहब और गदी माड़गुड़कर साहब की जो ये जुगलबंदी हुई,
1: जी जी जी
0: वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है, और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
1: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956, लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था। और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है
0: जी
1: और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा
1: जी हाँ
0: है। फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि
1: जी
0: सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति,
1: जी
0: आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक
0: एक
1: फिल्म बनाई
0: फिल्म बनाई।
1: जी
0: और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी है।
1: जी हाँ
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी ने।
1: जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। श्रोताओं, उनकी आवाज है, और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है, तो मित्रों मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले,

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी उपाध्याय का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोक गीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोक गीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोक गीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीत गा रहे पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन। फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद

भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में थे।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से।

0: विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
2: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की, 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
3: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो पता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
4: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27

जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नाबीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

निंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

की भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारतीय राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांवों में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर

तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारतीय राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
3: कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाजें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओ नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे।

जयदेव का सर्वध किया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाज

शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इस गाया मोहम्मद रफी ने कन्यादान फिल्म का गीत आपने सुना, नीरज का लिखा।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देवबर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोता, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

बार दी से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, थोड़ा मौसम का तकाजा है, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी खुशियाँ, तो सुरों सरगम की बहार लिए और तमाम गीतों को लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे उन श्रोताओं के लिए बता दें जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या जो हमारे नए श्रोता हैं, उन्हें लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़ सकते हैं इस पते पर हमारे कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। आज की जो इबारत है श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो फेसबुक पर देखा है, उन्होंने तमाम सारे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो ये इबारत अपने रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कायनात की सुंदर तस्वीर किसी शहंशाह के ताज में जड़े नगीनों से कम नहीं, इन्हें देखते आंखें थकती नहीं। मुझे याद है वो जीवन से भरी आंखें जो तस्वीर में भी बातें करती थी, वो जुल्फ झूमती हवाओं सी जो प्यार में अरमानों को जगाती है, प्यार बनकर दिल के साहिल से टकराती है। मोहब्बत के मोती थे यादों के कैनवास पर, लेकिन वो बात तस्वीर में कहां जो आपकी बातों में है। तुम्हारे बहुत सारे श्रोताओं ने तस्वीर के बारे में लिखा है। जी हाँ, तस्वीरें जो कभी हाथ से बनाई गई, कभी दिल में उकेरी गई, कभी प्रकृति के सुंदर नजारों में नजर आई, कभी जिंदगी में रंग भरती हैं, तो कभी सपनों में चित्र बनकर उभरती हैं। ये तस्वीरें आपको कितना प्रभावित करती हैं श्रोताओं, तस्वीरों से जुड़ी यादें आपको साझा करनी है आज के इस कार्यक्रम में। इन तस्वीरों में कुछ फूल भी रंग भरते हैं, कुछ नजारे भी रंग भरते हैं, कुछ सितारे भी रंग भरते हैं।

एक तस्वीर इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, यानी कह सकते हैं कि अभिनेत्री की तस्वीर है। और ये कौन सी अभिनेत्री हैं, ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ में, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। और हमने गीतकार का नाम पूछा था, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय, फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं, तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है श्रोताओं। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सौंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है, वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आंखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो हैं। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं, जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है। कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं, अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश। वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज के नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में, तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में, तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है, और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी श्रोताओं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारी श्रोता लिखती है, समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंची के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी ओर से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चल

चित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिनों बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह, जीवन, आंखें, जुल्फ, झूमती, मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किन की बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गीत था शैलेंद्र का लिखा, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी, मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं, आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं, इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे। और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं, बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में, और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है, तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत, तस्वीर मोती साहिल, ये वर्ड्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है, तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है, आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं, बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है, जिसे देख दिल बोल उठता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ, एक बात है जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है, हमने देखी है तस्वीर।

दिलों में उन आंखों की महकती खुशबू हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुरानी यादों की गठरी खुलने वाली है। सच में हमें काफी समय हो गया है हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं। और हाँ, क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं?

एक श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती। अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहाँ पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समंदर में वापस ले जाती है, जहाँ रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताज़ा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं, जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का।

रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं, ये कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं, तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना, चेहरों चेहरे की झुरिया और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था, विनोद मेहरा अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि

इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचकोले खाती समुद्र में गोते लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर अ पार्ट एंड अ पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स आर एज वेल एज प्रोज हैव डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ आइज। ऑल द बेस्ट। इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं। कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहाँ सहेज पाती हैं। इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहाँ। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं है, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर हैं। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोताओं, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे

अभिनेत्री मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है श्रोताओं। इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार

0: दिल के सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओ, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरू सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती हैं, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती हैं, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज्म का अधूरा शेर हो। इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लड़ अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, एक और श्रोता लिखती हैं, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज कैंची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रूम रूम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

बारह तेरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। खुमार बाराबंकी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं। तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत खरीद कर दिए। अब वो नहीं हैं और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र ले गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है। मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की, काली घटाओं की, रात में चांद की, तारामंडल की, सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, तालाब, झील, पर्वत, देवदार और वृक्ष पक्षी, ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज़ में रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, परिवार के संबंधियों, यात्रा, प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी हैं। तो तस्वीरों की यादों को ताज़ा करता कार्यक्रम सुरीला सफर अब यहीं संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी हैं हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन

हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं। वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है, वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार

0: आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल

0: स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में

0: समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
4: वो तेरे प्यार का।
3: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
5: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
3: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
6: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
3: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
7: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
3: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
8: होट

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बदन

0: आप सुन रहे थे लाज साहब फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होट

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहेगी।

फिल्म आंधी का दो गाना आपने सुना है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी माहिती, चंद्रया मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा दीपक गौतम बिट्टू बिट्टी अरिहंत सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहां बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूं।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब।
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
3: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
3: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ।
1: सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।

0: राजेश सीमा, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहां, जहां धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की मां मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
1: लेकिन आप जा कहां रहे हैं
2: पिताजी?
0: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
2: आप आराम से बैठिए ना।
0: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
3: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
0: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
2: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: क्यों
3: नहीं पूछना चाहिए क्या?
0: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
3: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
3: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा।

0: अब क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश का रंग तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के

0: विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया, मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ,

0: तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया, मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं? जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: आप ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई, मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठ रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ, तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम, बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ, अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूँ माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा, जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली

0: रहूंगी माँ, तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: मैं अभी जा कहा रही हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
2: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
1: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
3: ये एकाएक क्या हो गया भैया?
2: तुम सब कुछ जानते हो नरेश,
3: मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सन्न रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
3: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया है।
3: लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, क्या कहकर गए थे, कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
3: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
3: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
3: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
3: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
2: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
3: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
2: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
3: गए तो थे।
2: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
3: हुई थी।
2: तुमने क्या कहा था?
3: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
2: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
3: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
2: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
3: उन्होंने क्या कहा?
2: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
3: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
2: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
3: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
2: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
3: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
2: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
3: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
2: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
3: जानता हूं मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
2: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
3: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
2: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
3: समस्या? क्या समस्या है?
2: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
3: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
2: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
3: समस्या तो कठिन है ही।
2: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रही हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
3: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
2: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
3: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।

0: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना, अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो, हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया,
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा, पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
2: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
2: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
2: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
2: इतना आसान है बेटे?
0: है क्यों नहीं?
2: इतने रुपए लगेंगे,
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
2: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
2: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
2: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
2: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
2: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा।
2: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
2: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ, सोच ही लिया है।
2: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
2: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
2: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
2: सोचना क्या है,
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
2: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
2: हाँ, शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
2: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
0: हाँ, रुपये तो लगेंगे।
2: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
2: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
2: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
2: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
2: और नरेश?
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
2: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेवारी ना समझे तब?
2: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे
2: तब? परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: क्या सोचना पड़ेगा?
2: हमें ही जब शादी तय कर

0: करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
1: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही शादी तय की थी। वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
0: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपने 3 बच्चियां हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया भैया भैया, क्या हो गया भैया?
1: क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
1: क्या हुआ? क्या नरेश,
2: चलकर देखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया।

0: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश, कृष्णा ने लिखा है।
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी, तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो, मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें

0: तो जहां भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुन्य है।
1: माम मरना सुन्य है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
2: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा नहीं रही। क्या मतलब है इसका? कहां नहीं रही दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
2: ये आपके घर की चिट्ठी है, लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
2: आपकी पत्नी बीमार है।
1: आप मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मर गई? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूं, तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
2: लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती,
5: उजाले उनकी यादों की। जा रहे

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं
1: क्योंकि
2: कैसे
1: पुराना नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और
2: जी,
1: एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको
2: जी,
1: याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र

0: में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब
1: बात
0: लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
1: जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी, और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए
0: जी
1: और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ, तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे, सुनाओगी?
0: वाह वाह,
1: तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ, और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई।
0: जी
1: और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था, लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने
0: वाह
1: कहा
0: वाह,
1: क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानी है? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई, लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ
0: ओहो
1: तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
0: तो
1: तो
0: मजा था कि सजा
1: हाँ
0: थी?
1: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे, हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा,
0: वाह
1: मतलब
0: वाह,
1: बच्चों के लिए किशमिश कहो।
0: सुंदर नाम।
1: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: मेरी
0: जी
1: माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक CV में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
0: लेकिन
1: तो
0: एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे
1: जी
0: राज्यसभा की सदस्य रहीं,
1: हाँ
0: परिवार नियोजन, महिला
1: जी जी
0: शिक्षा को लेकर जो
1: हाँ
0: काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
1: करेक्ट
0: ये भी जो
1: हाँ
0: इन दोनों की जो छत्र छाया
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: दो महान हस्तियां,
1: जी
0: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
1: इसमें
0: बचपन में
1: कोई
0: मिली।
1: शक नहीं, और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे कोई, वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का बाल वाङ्मय लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं
0: जी
1: क्या कहना
0: बिल्कुल,
1: चाहती। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके
0: बिल्कुल
1: वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम

0: सम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है। तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है?
0: ओ डियर, चलो ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी?
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा, लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा, और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: है
0: कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: कमाल की बात है। हाँ, शरारती थी?
0: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की, और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे, तुम सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, माँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, हाँ, बड़ा प्यारा
0: तो
1: था।
0: हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी, नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी, नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो माँ ने, नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी।

0: तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और
1: वाह
0: फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा। गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से।
1: गजब
0: और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई।
1: वाह
0: और
1: वाह
0: कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, ये तो
0: हाँ
1: इतनी भव्यता के साथ
0: हाँ
1: शादी की गई
0: जी, और
1: मुझे ना।
0: मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ ये भी एक विडंबना
0: हाँ
1: की बात है,
0: लेकिन
1: ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहां पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं।
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, मुझे
0: हाँ।
1: लगता है वो उसी जज्बात को वो
0: वाह
1: आगे
0: वाह
1: बढ़ा रहा
0: क्या
1: है, तो
0: बात,
1: वो गाना
0: सुनाइए
1: सुनते हुए
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ाते
0: जी।
1: हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को
1: या
0: पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि
1: हाँ
0: आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो
1: हाँ
0: मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इप्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देने आहे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
0: जी,
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन
1: तो
0: शैली का।
1: जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां,
0: हाँ, ये बड़ा मजेदार
1: हाँ।
0: है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या द गुड अर्थ, या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस, कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
0: वाह
1: कहानी, और
0: वाह,
1: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता है। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था,
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: बिल्कुल।
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
0: जी
1: राम
0: जी
1: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
0: शायर हुए।
1: गाने
0: जी
1: वाले, हाँ।
0: जी
1: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे

0: अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुराई की नोक अटकती है। हाँ, सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी
0: सुराई की नोक अटकती है और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची
0: रही
1: चली
0: है,
1: आती है।
0: और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो
1: हाँ
0: उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
1: वाह,
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता
1: गजब गजब
0: नहीं।
1: गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
0: जी
1: हैं, वो
0: देखो वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो है वो
0: हाँ
1: मुझे बड़ी जरूरी लग रही है
0: हाँ
1: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली,
0: हाँ
1: ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी
0: हाँ
1: मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा, जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल।
1: ओहो,
0: हाँ, अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी रावण

0: स्तोत्र जटा कटाह संभ्रम
1: वो पूरा
0: ब्रह्मणि
1: याद है,
0: वगैरह
1: शिव तांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाहट और मिजान से कड़कड़ाहट से क्या डरूं, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंके कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: भारी
0: होते
1: होते
0: हैं,
1: हैं, खींच
0: वो
1: के
0: ऊंई
1: खोलो।
0: करके मैंने खोला दरवाजा। दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओ हो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओ हो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है। मैंने कहा नहीं अब क्या है, कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी।
1: जी
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया, जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया
1: वाह।
0: और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ
1: अच्छा अच्छा
0: दिन का
1: वाह
0: जो भी छोटा मोटा। तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की, ऐसी दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई।
0: 3 गुना, फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी। तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ। तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पियर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वॉज ग्रेट फन, आई एंजॉयड
1: और
0: दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं ट्रंक कॉल नहीं, वह बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी।
1: जी
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुळकर के घर का फोन दे सकती हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: तो दो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा ताई ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के मैंने कहा वाह वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना,
1: वाह
0: मैं
1: वाह
0: सच,
1: वाह,
0: हाँ हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: तारीफ ही करती
0: बेचारी
1: है।
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही। और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम
1: जी
0: माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से,
0: आवाज से,
1: वाह
0: और ये पहला अनुभव था। और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा।

0: फिल्म पसंद नहीं, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना, कि
1: जी
0: ताई ताई बोलते हैं यू नो,
1: वाह।
0: वो दोबारा नहीं, कभी नहीं,
1: लेकिन
0: दोबारा
1: जिनका
0: नहीं
1: नंबर
0: कभी।
1: आप ढूंढ रही थी,
0: हाँ
1: गदी
0: हाँ
1: माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी
0: हाँ
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा कौन
1: दो
0: सा?
1: आंखें 12 हाथ उन्होंने
0: अरे
1: लिखी थी, जो
0: ओके,
1: ओपन जेल कंसेप्ट पर जो
0: कमाल है,
1: फिल्म थी,
0: इत्तेफाक की
1: वो
0: बात
1: तो गदी माँ ने ही
0: है।
1: लिखी थी, है
0: सुनिए
1: ना। तो
0: सुनाइए।
1: मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहां जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड,
1: हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे,
1: हाँ,
0: 7-8 नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक का नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है, और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फलां दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं, और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर, एक पहा किती तरी थोर, वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
0: जी
1: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आ आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं।

0: आने लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके पोपट, वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है, और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुलो देश

0: और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका? पु ल देशपांडे।
1: अरे वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह, क्या बात
0: कि
1: है।
0: सही, तुझी श्रुति का ऐख ली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली, और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीत्रा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांचे कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से, डेक्कन जिमखाना जाती थी बस से, था 3 नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात, तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी, और पता नहीं ये पत्ते नगरी का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान, चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
1: जी
0: बताती हूँ,
1: जी जी
0: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है, और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा, फला दिन का ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट, विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी, और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरी के खेल होते हैं इधर उधर, भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरी का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन में छापी ये किताबें, और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में, और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते
1: कर भी
0: रहते
1: लेते हैं
0: हैं,
1: लोग।
0: कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहां ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा सचमुच।
1: वो एक लड़की
0: हाँ, वो
1: दिखी
0: नीचे
1: और
0: दिखती है
1: वो
0: नेहा।
1: पत्ते
0: हाँ,
1: से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी वो
0: अच्छा, ओ
1: जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ, ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो बुष्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर, और
1: बिल्कुल
0: उनकी
1: बारी बारी
0: बहुत,
1: से वो फारूक
0: हाँ
1: शेख रह जाते।
0: हाँ
1: चश्मे बुजुर्ग का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने
0: हाँ
1: ताश से ताश
0: हाँ
1: जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बुजुर्ग का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस
0: कौन
1: दौर की
0: कौन
1: कहानी
0: सा
1: चल
0: गाना
1: रही है,
0: सुनाओगे?
1: आपकी पसंद।
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल
0: खड़ी।
1: सुनते,
0: हाँ
1: काली घोड़ी द्वार
0: हाँ
1: खड़ी, वाह सुनते।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है।
1: जी
0: ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी

0: ले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था, हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का, हाँ, एक शो हुआ फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया, हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
1: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है
0: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना,
1: जी।
0: इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी।
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको,
1: जी, तो वो
0: हाँ
1: अखबार में विज्ञापन देखा
0: हाँ
1: आपने।
0: तो वो देखा। मैंने तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो, मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रन थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
1: अच्छा, ऐसे ही
0: सकता
1: कह दिया।
0: है। तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर 1-2 महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। फिर 1 महीने में शादी, आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते 1 महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी।
1: जी
0: एनीवे, तो आई ज्वाइंड एनएसडी एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर, और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, और वो था इब्राहिम अलकाजी,
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब 7 जिंदगी में पूरा पड़ेगा, इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, ही वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं, इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने, मेरा ख्याल है, सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी।
0: हाँ,
1: बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी।
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती है
0: हाँ, कालिदास की पत्नी,
1: जी।
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी, एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी, हाँ। तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया,
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी।

0: सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरी क्लास में
1: जी
0: थे और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई। दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
1: जी
0: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को ऐसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ,
1: वाह,
0: और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है,
1: वाह,
0: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन हिली। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे, तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से। और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब
1: जी
0: टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वे पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड।
1: हैं।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, लुर्गी, टकिया, शिवपुर, सिलाजू, उचेरवा, आनंदपुर, धंधापुर, उधवा कटरा, कुंदी कला, रेवतपुर, सिधमा, बदौली, जवाखाण, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, जगन्नाथपुर, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, बरिमा, कंडराजा, कुदारीडी, डांड, केसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चूंदी, लोटा पानी, बोडो कछार, करमटोली, रायकेरा, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, घंता डांड, परसा डांड, पेटा, सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, कापू और लैलुंगा में हाथियों की कुल संख्या 99 है। ये सिंघी छाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमगांव, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर, केरा कछार, पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के किंदई, एतमा नगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी

0: नी कुकरीकादर बनिया चोटिया लालपुर सिमरहा बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 46 है। ये बंगूरसिया जुनवानी भैंसगढ़ी कंटाझरिया नागदरहा पंडरीपानी बटुरा कछार अमलीडीह सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बुलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये ताल दादर फुरफुंदी झाल पानी अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार ताराझर कुरवा पानी खोला पारा छिंदौला लूठा पारा फरसरा बोडा पाला जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोठ।

हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बागी फिल्म के गीत से। आवाज मोनाली ठाकुर की है, गीत लिखा है कुमार ने और संगीतबद्ध किया है मीत ब्रोस ने। आइए सुनते हैं।

और अब आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है विजू शाह का। लीजिए सुनिए।

और आइए अब चित्रपट संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का गाना। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार भप्पी लाहिरी।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए चित्रपट संगीत में अब हम पेश कर रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म का गाना। आवाजें उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत उत्तम सिंह का है।

और अब हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं चालबाज फिल्म का गाना। आवाज अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: Emmy.
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम के अगले गीत का। फिल्म का नाम है सत्या, आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत निर्देशन है विशाल डडलानी का। आइए सुनते हैं।

सत्या फिल्म के इसी गाने के बाद चित्रपट संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 5:35 हुए हैं और अब लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम के इस अंक के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है ईमेल के जरिए। नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत। शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, नामना परवीन और वली भाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और उजस्वी यादव। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद, मिफरा नवाज और चाहत। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। और सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। जालंधर से संदीप जाटोलिया। आप सभी की फरमाइश पर अब तक पहुंचा रहे हैं पराया धन फिल्म का गाना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं इस गीत में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें आप सभी ने भेजी हैं। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित गवहाणकर और ध्वनि गवहाणकर, जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरैटीपारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा नेहा और मुनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। आप सभी हैं वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान, उत्तम जमदाड़े, भूचो कैंचिया पंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं बेताब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें हैं इस गीत में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइशकर्ताओं के नाम इस तरह से हैं। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां। अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। पाहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। नेपानगर से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। धाड़ी नोंदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। पलारी

से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, और टोरोवाल नवासहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। आइए, आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं वारिस फिल्म का गाना। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। वर्मा मलिक के लिखे गीत की धुन बनाई है उत्तम जगदीश ने। लीजिए, सुनिए।

गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, बुलढाणा बड़सिंडी महाराष्ट्र से अमूल मानकर, शुभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। अब सभी ने फरमाइश भेजी है दूसरा आदमी फिल्म का गाना सुनने के लिए। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने। लीजिए, सुनिए ये गीत।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज शाम 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र रायपुर केंद्र से रिले करेंगे, जिसमें बीएनएस नए कानून के संबंध में जानकारी साझा करेंगी श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़। संसद के समक्ष मुद्दे, ये परिचर्चा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर रिले करेंगे। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में आज संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती और हमर जीवन, और इसके अलावा फरमाइशी क्रम होगा आप मन के गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8 बजे हम आपको कलाकार शंकर महादेवन के गाए गीत सुनवाएंगे। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:15 पर। रात 9:15 से हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:20 पर और संध्या 7 बजे। ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अब एक नजर हमारे केंद्र से कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा हल्दी की खेती। फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान में 6:45 पर चर्चा सुनिएगा स्वच्छ भारत मिशन पर। आज सुबह कार्यक्रम में आपसे हम जुड़ेंगे 7:05 पर यादों के झरोखे से। ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 7:30 पर छत्तीसगढ़ी गीतों के कार्यक्रम अमराई में कलाकार आत्मा कोसला और साथियों के और भीम यादव, नीलिमा जान एवं साथियों के गाए गीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बातों और गीतों का फोन इन कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत हम प्रसारित करेंगे 10:00। आपकी पसंद यह फरमाइशी कार्यक्रम होगा 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम प्रसारित करेंगे दिन में 11:00। 11:30 से हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

कल संध्या 5:35 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात का विषय रहेगा नशा से बचने के उपाय सोच कर रखें। इसके अलावा क्रम रहेगा मेरी बारी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहेंगे नेमी चंद साहू। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में 7:20 पर बेरा के गोट में सुनिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विषय पर चर्चा। इसके अलावा भेंट वार्ता के अंतर्गत नैनो यूरिया नैनो डीएपी का वर्तमान समय में महत्व एवं जैव उर्वरकों का महत्व, इस विषय पर विषय वस्तु विशेषज्ञ

श्री हेमकांति बंजारे कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से की गई बातचीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8 बजे कलाकार रहेंगी सपना अवस्थी। रजनीगंधा कार्यक्रम का समय रहेगा रोज की भांति रात 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। हम अपने श्रोताओं को बता दें 9:30 पर कल रात संसद के समक्ष मुद्दे ये परिचर्चा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद समीक्षा कल रात 8 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10 रात संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 होने को है। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम कुछ ही समय के बाद हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कोरिया जिले की चिट्ठी। आलेख निहारिका धुरिया का है। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं कोरिया जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 17 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर विद्यालयवार RTE की रिक्त सीटों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक RTE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी। वहीं 17 से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। इस अंतिम चरण में केवल वे ही पात्र बच्चे आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पहले के किसी भी चरण में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। श्रोताओं, जिला कलेक्टर रोकतिमा यादव ने हाल ही में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित राजस्व कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में मैदानी अथवा गैर कृषि भूमि का सीमांकन किया जाना है उनका तत्काल निराकरण किया जाए। वहीं जिन प्रकरणों में खड़ी फसल होने से किसानों को असुविधा हो सकती है ऐसे सीमांकन 15 अक्टूबर के बाद किए जाएं। कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अविवादित नामांतरण और बंटवारा मामलों का निराकरण जल्द किया जाए। श्रोताओं, कैच द रेन अभियान के तहत कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा बीते 17 जुलाई को वर्षा का जल बचाओ विषय पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में लगभग 150 स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से संबंधित जागरूकता पॉम्पलेट वितरित कर जल बचाने का संदेश दिया। रैली के समापन के बाद सभी महिलाओं को पौधों का वितरण किया गया तथा उन्हें संकल्प दिलाया गया कि वे इस वर्षा ऋतु में कम से कम 5-5 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करेंगी। श्रोताओं, मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जिले में स्थानीय स्तर पर आवा पानी झोंकी अभियान चलाया गया। इसमें ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की रोजगार मूलक योजनाओं के तहत जिले में 400 से अधिक डबरियों का निर्माण किया गया। इससे बारिश के पानी को सिंचाई और आजीविका गतिविधियों के लिए रोकने में सफलता मिली है। पिछले 2 वर्षों में जिले में 13 नए तालाब और नवा तरिया बनाए गए हैं, जबकि 93 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। श्रोताओं, प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अलनीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक

0: बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर देने की अपील की है। श्रोताओं, जिले के सोनत विकासखंड के घुघरा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की गई है। इसके जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे विषय अब 3D एनिमेशन, शैक्षिक वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन व्याख्यान, प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री और विभिन्न शिक्षण ऐप्स का लाभ भी मिल रहा है। इससे पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी होने के साथ विद्यार्थियों की डिजिटल साक्षरता और सामान्य ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो रही है। श्रोताओं, बारिश के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने, राहत और बचाव दलों को सतर्क रहने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। श्रोताओं, जिले के केनापारा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2027-28 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आज आप कोरिया जिले की चिट्ठी सुन रहे थे। आलेख निहारिका धुरिया का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहली सुनो आज के प्रमुख समाचार। काली ले शुरू हो ही संसद के मानसून सत्र, ओखर ले पहली आज बुलाएगी सर्वदलीय बैठक। दो दिन के बरसाले प्रदेश के नदिया नरवा में उफान, अवैया 24 घंटा में फेर उत्तर छत्तीसगढ़ के कतकोन जगह अति भारी वर्षा की चेतावनी। और दुर्ग जिला के जामगांव में काली स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में हो ही राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव के आयोजन। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र काली ले शुरू हो ही। ये सत्र अवैया महीना के 13 तारीख तक चलही। ये सत्र के दौरान कतकोन महत्वपूर्ण विधेयक ऊपर चर्चा करी जाही। मानसून सत्र ले पहली सरकार आज सर्वदलीय बैठक बुलाए रही से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में हो ये बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन घलो मौजूद रहीन। मीडिया ले गोट बात करत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू है बतायन की उमन विपक्ष ले आग्रह करीन है कि संसद के मानसून सत्र के कार्यवाही ला सुचारू रूप ले चलाए में सहयोग करें। संसद सबोझन के आए सरकार आने आने विधायी कार्य कर ही और विधेयक घलो पेश कर ही। संसद जते कुशलता ले काम कर ही देश भर ओतकेज बढ़िया हो ही। प्रदेश के आने आने जिला में पाछो दो दिन ले होइया वर्षा के सेती जनजीवन प्रभावित हो गए। उन्हें कतको नदिया नरवा उफान में है। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर विकासखंड में भारी वर्षा के बाद धोंधा गोविंदपुर रमकोला रद्दा में बने एक ठा निर्माणाधीन रपटा बोहागे। एखर ले कतकोन गांव के जिला मुख्यालय ले संपर्क घलो टूट गए। उहे बलरामपुर जिला में सरलग बरसा ले कन्हर नदी में पानी बाढ़ गए। रामानुजगंज में एनिकट के ऊपर ले पानी बोहावत है। एखर सेती जल संसाधन विभाग सावधानी बरते बर एनिकट के दोनों गेट में ताला लगा दिस और लोगन मन ले कन्हर नदी के तीर तखार में नहीं जाए के अपील करे है। एति जांजगीर चांपा में लीलागढ़ नदी में बने कुटीघाट के पुलिया टूटे ले मंडरावत खतरा के सेती ये रद्दा में 31 जुलाई तक अवई जवई बंद कर दे गए है। उन्हें बलौदा बाजार जिला में महानदी में उफान है जेखर ले लोगन मन ला सतर्क रहे के चेतावनी दे गए है। एति कोरबा जिला में घलो भारी वर्षा के सेती एक दर्जन ले ज्यादा पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं जेखर ले कतकोन गांव के संपर्क टूट गए हैं। उन्हें भारी वर्षा के सेती रायपुर ले बिलासपुर कोरबा और रायगढ़ रद्दा में कतकोन लोकल और मेमू ट्रेन लघलो रद्द करेगी। इही बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाका पर ऑरेंज अलर्ट जारी करत भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी है बतायन कि बस्तर और रायपुर संभाग के कुछ एक जिला में घलो भारी वर्षा होए के संभावना है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ह खराब मौसम के सेती यात्रा ल अस्थायी रूप ले रोक दे हे।

0: श्राइन बोर्ड के सूचना के अनुसार तीर्थयात्री मन के सुरक्षा बर ये निर्णय ले गए हे। उन्हें श्रद्धालु मन ला धैर्य राखे के संग श्राइन बोर्ड के जरूरी सूचना के पालन करे के सलाह देगी। जानकारी ले मौसम की स्थिति सुधर ही ओखर बाद यात्रा फिर शुरू करे जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए हा छात्र और पालक मन ला ओएमआर सीट के जांच बर सिर्फ असली सीट ही जमा करे के सलाह दे हे। फर्जी या एआई ले बनाए गए ओएमआर सीट दे मा कानूनी कार्यवाही हो सकत हे। एखर सेती छात्र और पालक मन ले अपील करे गए हे कि ओमन जांच बर सिर्फ असली ओएमआर सीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल ही मा जांच बर भेजे गए कतकोन ओएमआर सीट फर्जी पाए गए रही से एखर सेती अब हर शिकायत और ओएमआर सीट के सावधानी ले जांच करे जावत हे। काली रायपुर मा आयोजित विशेष लोक अदालत मा 847 ठन चेक बाउंस के प्रकरण के निराकरण करेगी। एखर बर रायपुर जिला न्यायालय मा 19 ठन विशेष खंडपीठ के गठन करे गए रही जेमा करीबन 1800 मामला रखेगी। बता दें कि विशेष लोक अदालत के उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले करीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगुबार्थन बांचे समाचार कोती। दुर्ग जिला के जामगांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में काली राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव करही। ये मौका में मुख्यमंत्री नवा लैका मन ला तिलक लगा के स्वागत करही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज कवर्धा के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। ये बेरा वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधा लगा के पर्यावरण संरक्षण के संदेश दें। ये मौका में श्री शर्मा कहिन कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक ठन भवन नहीं बल्कि जिला के अवैया पीढ़ी के धरोहर आए। उमन अधिकारी मल्ला निर्धारित बेरा में मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्य ला पूरा करे के निर्देश दें। ये बेरा उप मुख्यमंत्री यहू बतैन कि एसओ ले ही 50 सीट संग मेडिकल कॉलेज के संचालन शुरू करे जाही। धमतरी जिला में बनाए गए देश के पहली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पैक्स आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल ला राष्ट्रीय स्तर में सम्मानित करेगी। कोलकाता में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के 17वां स्थापना दिवस समारोह में ये मॉडल ला ग्रामीण भारत में कृषि आधुनिकीकरण के सुघर उदाहरण मानेगी। कार्यक्रम के बेरा बेहतर कृषि सेवाओं की उपलब्धता के लिए पैक्स का सशक्तिकरण विषय ऊपर पैनल चर्चा आयोजित करेगी जेमा भाग लेवा धमतरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ड्रोन कृषि सेवा मॉडल ऊपर अपन विचार साझा करीन। बता दें कि धमतरी देश के ऐसा पहली जिला आए जोन सहकारी समिति के जरिए ले किसान मल्ला सोझे ड्रोन सेवा उपलब्ध कराई। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कोरबा जिला प्रशासन डहर ले काली रन फॉर ग्रीन मैराथन के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन के संगे संग युवा पढ़ैया लैका सामाजिक संगठन खेल प्रेमी और आम नागरिक हिस्सा लेन। मैराथन में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ विजेता टीम के कप्तान किरण पिस्दा घलो शामिल होइन। ये बेरा मैराथन में बढ़िया प्रदर्शन करैया प्रतिभागी मल्ला पुरस्कार देगी। वे मैराथन के बाद प्रतिभागी मन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करीन संगे संग स्वच्छता अभियान चला के पर्यावरण संरक्षण के संदेश घलो देन। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद घलो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नई लगैया प्रदेश के 149 बस संचालक मल्ला परिवहन विभाग डहर ले नोटिस जारी करेगी। ये सबो झनला 23 जुलाई तक जवाब मांगे गए है। एकर बाद बने ढंग के जवाब नहीं मिली या फिर निर्धारित बेरा में नियम के पालन नहीं करैया बस मन के अनुमति ला रद्द करे जा सकते हैं।

0: थोरकुन समाचार सारमा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ह दसवीं कक्षा के दुसरैया बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे हे। छात्र मन डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल में परिणाम देख सकत हे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ह जुलाई सत्र ODL पाठ्यक्रम में प्रवेश बर आखिरी तिथि 15 जुलाई ले बढ़ा के 31 जुलाई कर दे हे। नारायणपुर में इंश्योरेंस क्लेम देवाय के नाव में कमीशन मांगे के आरोप में पूर्व थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव ला गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। जांजगीर पुलिस ह देश भर में म्यूल अकाउंट उपलब्ध करैया गिरोह के 5 सदस्य ला गिरफ्तार करीस। और कोरबा जिला में वन विभाग के टीम ह करीबन 10 लाख रुपया के सरई लकड़ी के हेराफेरी मामला में एक आरोपी ला गिरफ्तार करीस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। काली ले शुरू हो ही संसद के मानसून सत्र ओखर ले पहले आज बुलाएगी सर्वदलीय बैठका। दो दिन के बरसा ले प्रदेश के नदिया नरमा में उफान और यह 24 घंटा में फिर उत्तर छत्तीसगढ़ के कतकोन जगह अति भारी वर्षा के चेतावनी। और दुर्ग जिला के जामगांव में काली स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में हो ही राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव के आयोजन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:20 हुए हैं और अब हम हाजिर हैं आपके लिए ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक लेकर। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें आप सभी ने भेजी हैं। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी, सोंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन, कुंभारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौट से पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा, धनौरी तेरीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गम्हाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश गम्हाणकर, 67 मोहाली सेक्टर चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इब्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में हमको तुमसे प्यार है फिल्म का गाना। देव कोहली के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल फरमाइशें भेजी हैं आप सभी ने। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर, सौंगा मगरलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, हेयांश कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार, कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, कर्मा चौक लोहारेडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, रोहांसी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमेरी कुलासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु, ताशु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, दिल्ली से है तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। आप सभी की फरमाइश पर अब तक पहुंचा रहे हैं आराधना फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत की धुन SD बर्मन ने बनाई है। लीजिए सुनिए आराधना फिल्म का ये गाना।

इसी गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद कानून की बात कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। कानून की बात कार्यक्रम में आज सुनिए BNS नए कानून के संबंध में जानकारी दे रही हैं बग्गा गोरख असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ की श्रीमती अर्शलीन कौर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है और इस बदलाव में यदि विज्ञान और तकनीक का भी साथ मिल जाए तो हम आसानी से जटिल मुद्दों को हल कर सकते हैं और यही हमारे आज के कार्यक्रम कानून की बात के विषय BNS नया कानून की खासियत है। इसने कानून को आधुनिकता का रूप दिया है जिससे ये ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। आज BNS नए कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ से श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख जी को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को BNS भारतीय न्याय संहिता क्या है इसके बारे में बताएं।
2: जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत का एक नया आपराधिक कानून है जिसने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान ले लिया है।
1: जी,
2: इसका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सरल एवं प्रभावी बनाना है। लगभग 160 वर्ष पुराने IPC को उस समय बनाया गया था जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था। बदलते समय के साथ, नई तकनीकों के साथ और नए प्रकार के अपराधों को देखते हुए भारत में एक नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई जिसका परिणाम स्वरूप BNS लागू की गई। BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं है बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है, कानून को और भी प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना होता है और समाज के कानून के प्रति एक विश्वास को मजबूत करना होता है। यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों को और अधिकारों का सम्मान करते हुए अपराधों को प्रभावी नियंत्रण रखते हुए स्थापित करने का प्रयास करता है।
1: मैम, BNS में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया?
2: मैं कहना चाहूंगी कि हर नागरिक के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि BNS केवल कानून के नाम का बदलना नहीं है।
1: जी,
2: IPC से BNS बन गया, सिर्फ यही बदलाव नहीं आया है बल्कि एक भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक सुचारू, अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: जी,
2: इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति और जागरूक हो सके और कानून का पालन करते हुए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके।
1: जी,
2: BNS में पहली बार सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधानों को जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवा अर्थात कम्युनिटी सर्विस,
1: जी,
2: उसे भी दंड के रूप में शामिल कर दिया गया है।
1: जी, हम चाहेंगे आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि सामुदायिक सेवा किस तरीके से दंड हो सकता है।
2: पहले क्या होता था कि अपराध की 5 श्रेणियां बनाई गई थी।
1: जी,
2: अपराध में जो दंड मिलते थे, दंड के जो प्रावधान थे उसकी 5 श्रेणियां थी।
1: जी,
2: मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और ऐसे 5 प्रकार के

0: दंड का प्रावधान थे, जिसमें अब छठवां दंड अर्थात सामुदायिक सेवा को भी एक दंड का रूप देके
1: जी
0: अपराधों के दंडों में जोड़ दिया गया है। सामुदायिक सेवा बीएनएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीन अवधारणा है। इसका उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना ही नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार में सुधार लाना है, उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है। गंभीर अपराधों की तो सजा सुनिश्चित थी ही
1: जी,
0: लेकिन सामुदायिक सेवा का अर्थ है कि मान लो कि बहुत छोटा मोटा कोई अपराध है जिसके लिए किसी को जेल भेजना बहुत अत्यधिक कठोर होगा
1: जी,
0: तो उन छोटे अपराधों के लिए, तुच्छ अपराधों के लिए न्यायालय ऐसे दोषी व्यक्तियों को समाज में कुछ हित करने के कार्य दे देती है। सामुदायिक सेवा
1: जी
0: में जो कार्य न्यायालय देती है उसमें ऐसे कार्य होते हैं जैसे सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य
1: जी,
0: जन जागरूकता अभियान में शामिल होने का कार्य, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ने का कार्य, ऐसे कार्य जो समाज में उपयोगिता के कार्य होते हैं
1: जी,
0: वो सजा के तौर पे दिए जाने लगे हैं इस बीएनएस के लागू होने के बाद
1: जी।
0: इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो छोटे और कम गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं उन्हें जेल भेजने के बजाय उन्हें अपनी गलती को सुधारने का अवसर मिले। इससे वह समाज के प्रति एक सकारात्मक सोच लेकर उनका विकास होगा, भविष्य में वे अपराध करने से बचेंगे, साथ ही जेलों में अनावश्यक भीड़ भी बचती है।
1: जी बिल्कुल सही। अश्लीन जी, इसके अलावा इसमें क्या कोई धारा भी जोड़ी गई है जो पहले नहीं थी?
0: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण धाराएं जैसे कि धारा 111, 112 और 113
1: जी,
0: ये तीन बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो अब बीएनएस में जोड़ी गई हैं। धारा 111 में पहली बार संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें अपराधी एक सिंडिकेट या गिरोह बनाकर अपराध करते हैं और वे अपराध भी छोटे मोटे नहीं होते हैं। ऐसे सिंडिकेट बनाकर वे अपहरण, रंगदारी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम जैसे अपराध आदि करते हैं, तो उनसे डील करने के लिए धारा 111 बनाई गई है
1: जी।
0: वैसे ही धारा 112 जो छोटे संगठित अपराधों से डील करती है, दोनों में ही धारा 111 और 112 दोनों में ही अत्यधिक सजा और अधिक जुर्माने का प्रावधान है। तो जो कठोर दंड और अधिक जुर्माना है वो लोगों को डराता है कि हम ऐसे बड़े अपराध न करें जिसका परिणाम ऐसा घातक हुआ
1: जी।
0: इसके साथ साथ ही धारा 113 ध्यान दीजिएगा, आतंकवादी कृत्य जो पहले कहीं आईपीसी में परिभाषित नहीं थे, अब ऐसे आतंकवादी कृत्यों को बेहद ही स्पष्ट तरीके से बीएनएस में परिभाषित किया गया है। पहले आईपीसी में आतंकवाद की कोई अलग परिभाषा नहीं थी, अब आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी बहुत कठोर दंड का प्रावधान स्थापित कर दिया गया है
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप कोई सबसे प्रमुख बदलाव कहें या एडिशन कहें तो वो है मॉब लिंचिंग
1: जी। मैम, मॉब लिंचिंग से हम क्या समझेंगे? हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताएं।
0: जी हाँ बिल्कुल, मॉब लिंचिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी अन्य व्यक्ति पर भीड़ के रूप में हमला करना।
1: अच्छा।
0: जिससे उसे गंभीर चोट पहुंच जाती है या उसकी हत्या भी हो जाती है।
1: अच्छा
0: हाँ, ऐसी घटनाएं अक्सर अफवाहें, संदेह, जाति या धार्मिक विद्वेष, शक, बच्चा चोरी की अफवाह या किसी के उकसाने के कारण की जाती है
1: जी।
0: मॉब लिंचिंग जो होता है ना वो कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध एक बहुत ही गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है, है ना
1: जी।
0: इसलिए किसी भी भीड़ का यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाए जिससे वो उभर ना पाए या उसकी हत्या कर दे
1: जी। बिल्कुल,
0: दंड देने का अधिकारी सिर्फ न्यायालय है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए किसी भी भीड़ द्वारा स्वयं दंड देने का असंवैधानिक और एक ये दंडनीय कृत्य होता है मॉब लिंचिंग
1: जी।
0: यदि मॉब लिंचिंग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीएनएस 2023 के अंतर्गत हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर चोट आदि या दंगा के अपराधों के लिए अब विशेष प्रावधान हो चुका है। मॉब लिंचिंग समाज में एक भय का माहौल, एक अराजकता फैलाने का वातावरण उत्पन्न कर देती है। इसे रोकने के लिए पुलिस की त्वरित कार्यवाही चाहिए, अफवाहों पर नियंत्रण चाहिए, जन जागरूकता चाहिए, कानून का कड़ाई से पालन चाहिए। तो ये मॉब लिंचिंग को एक अलग कानून बीएनएस में बना दिया गया है।
1: जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को मॉब लिंचिंग के बारे में बताया। अश्लीन जी, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं या घटनाएं घटती हैं जो आपराधिक होती हैं, तो क्या इसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है?
0: जी हाँ, हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर सुनते हैं कि कई बार सुबह सुबह उठकर महिलाएं वॉक पर गई हैं
1: जी,
0: या किसी ऐसे स्थान पर पैदल चल के।
1: जी
0: वैसे तो अब बहुत कम हो गया है कि लोग

0: पैदल चलते हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: बट यदि कोई व्यायाम करके आ रहा है जा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा जा रहा है, तो हम
1: जी
0: अक्सर सुनते थे कि सुबह सुबह कि उस महिला की चेन खींच ली गई, चेन
1: हाँ
0: स्नैचिंग हो गई,
1: जी
0: ये सब घटनाओं को हम सुनते थे।
1: जी
0: पर जब हम FIR करवाने थाने जाते थे तो इसके लिए जो धारा लागू होती थी उसमें, वो थी चोरी की धारा,
1: जी
0: और उसी प्रकार से उसका आगे फिर केस चलता था। पहले राह चलते व्यक्तियों की चेन या कोई भी आभूषण खींचे जाने पर जो चोरी की श्रेणी में उन अपराधों को रखा जाता था, अब BNS में स्नैचिंग के नाम से एक अलग अपराध घोषित कर दिया गया है,
1: जी
0: जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
1: मैम, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम सब 2-व्हीलर या फिर 4-व्हीलर का उपयोग करते हैं। सड़क दुर्घटना और हिट एंड रन मामलों के बारे में पता चलता रहता है,
0: जी
1: इसमें भी क्या कोई बदलाव है?
0: जी हाँ, देखिए हिट एंड रन वह स्थिति होती है, पहले हम जानते हैं कि हिट एंड रन क्या होता है।
1: जी
0: हिट एंड रन वह स्थिति होती है जब कोई वाहन चालक दुर्घटना के बाद उस घायल व्यक्ति की स्थिति देखकर

0: पहले राह चलते व्यक्तियों की चेन या कोई भी आभूषण खींचे जाने पर जो चोरी की श्रेणी में उन अपराधों को रखा जाता था, अब बीएनएस में स्नैचिंग के नाम से एक अलग अपराध घोषित कर दिया गया है
1: जी,
0: जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
1: मैम, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम सब टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर का उपयोग करते हैं। सड़क दुर्घटना और हिट एंड रन मामलों के बारे में पता चलता रहता है
0: जी।
1: इसमें भी क्या कोई बदलाव है?
0: जी हाँ, देखिए हिट एंड रन वह स्थिति होती है, पहले हम जानते हैं कि हिट एंड रन क्या होता है।
1: जी,
0: हिट एंड रन वह स्थिति होती है जब कोई वाहन चालक दुर्घटना के बाद उस घायल व्यक्ति की स्थिति देखकर या अनदेखा करके उसकी सहायता किए बिना या पुलिस या किसी भी संबंधित अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है। इसे कहते हैं हिट एंड रन।
1: ठीक
0: हिट
1: है
0: किया एंड भाग गया।
1: जी,
0: भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में ऐसे मामलों को गंभीरता से अब लिया जा रहा है। बीएनएस में प्रावधान है कि यदि कोई चालक लापरवाही से या उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है और दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचित किए बिना और घायल व्यक्तियों की सहायता किए बिना अगर घटनास्थल से वो भाग जाता है तो उसके लिए 10 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं यदि चालक दुर्घटना के बाद कानून के अनुसार पुलिस को सूचना देगा एवं घायल व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करता है तो उस सामान्य लापरवाही से मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान लागू होंगे जिनमें परिस्थितियों के अनुसार कम दंड के प्रावधान।
1: जी,
0: तो देखा जाए तो इसका उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटना करने वाले उस व्यक्ति की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना। जो भाग जाता था अब वो दंड के डर से भागेगा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा।
1: जी मैम, आपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई परेशानियों में जो नया कानून बना है बीएनएस, उसके बारे में जानकारी दी।
0: हाँ जी।
1: तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि बीएनएस ने हमें क्या क्या दिया।
0: जी हाँ बिल्कुल, अगर हम सम अप करें
1: जी,
0: अगर हम पिछली बातों की एक समरी निकालें
1: जी,
0: तो हम ये देखेंगे, आप भी ये कहेंगी कि बीएनएस ने हमें बहुत कुछ दिया।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि सामुदायिक सेवा, सबसे पहले तो कम्युनिटी पनिशमेंट
1: जी।
0: दूसरी बात है कि संगठित अपराधों को बीएनएस ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया
1: जी।
0: छोटे संगठित अपराध, आतंकवाद कृत्य, 111, 112, 113 जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पहले बताया आपको
1: जी।
0: इसके अलावा मॉब लिंचिंग जिसको एक अलग अपराध बनाने का प्रावधान बीएनएस में किया गया
1: जी।
0: फिर स्नैचिंग अर्थात चेन या मोबाइल आदि को छीनने की घटनाओं को भी एक अलग अपराध माना गया। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा दी गई है। बलात्कार, यौन अपराध और नाबालिगों के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उनमें कठोर दंड का प्रावधान है
1: जी।
0: सबसे जरूरी बात, हमारे भारत देश, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा का प्रावधान बीएनएस में किया गया है। पुराने राजद्रोह कानून के स्थान पर अब ये नए प्रावधान आ गए हैं
1: जी।
0: तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बीएनएस में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव
1: जी
0: आए हैं
1: जी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मैम क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?
0: बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को अधिक व्यवस्थित रूप में शामिल किया गया है। पहले महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध से जुड़ी धाराएं बहुत बिखरी सी थीं।
1: जी,
0: पर बीएनएस में एक अध्याय बनाकर बड़े ही व्यवस्थित ढंग से उन्हें धाराओं की माला में पिरोकर एक अध्याय के रूप में एकत्रित किया गया है। साथ ही जो रेप, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के कई मामले, उनमें पहले से भी अधिक कठोर, बेहद कठोर दंड का प्रावधान अब कर लिया गया है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। आम जनता अगर किसी भी समस्या को लेकर कानून की जानकारी या मदद चाहे तो किस तरीके से वो ये मदद ले सकती है?
0: आम जनता टोल फ्री नंबर 1500
1: जी,
0: भारत की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा संचालित यह राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को, विशेषकर गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को, लोगों तक निशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने का है
1: जी।
0: तो ये जो नंबर 1500 इसमें कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है, कॉल करके निशुल्क कानून की सहायता प्राप्त कर सकता है एवं करता भी है।
1: जी, अब हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को लोक अदालत की जानकारी दें और आगामी लोक अदालत कब है ये भी बताएं।
0: लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, सस्ता और त्वरित माध्यम है। इसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों को समाधान करना होता है, जिससे न्यायालय पर जितने भी लंबित मामले हैं उनका बोझ कम हो जाता है और लोगों को शीघ्र न्याय मिलता है। लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया जाता है
1: जी। मैम, आगामी लोक अदालत कब है?
0: ये जो लोक अदालत होने वाली है 12 सितंबर 2026 को, ये हमारी तीसरी लोक अदालत है
1: जी।
0: और इसके बाद 12 दिसंबर 2026

0: 2026 को चौथी और आखिरी लोक अदालत है इस साल की, उसकी भी
1: जी
0: जानकारी मैंने सोचा आपको दे दूं।
1: जी धन्यवाद मैम। मैम आपने बीएनएस से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में हमें समझाया। हमें विश्वास है आपकी ये जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी। श्रोताओं अभी हमने जानकारी ली बीएनएस नए कानून की श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख जी से, जो असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ से हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मिलेंगे एक नए और उपयोगी विषय के साथ। अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को, नमस्कार।
2: कानून की बात कार्यक्रम में आज आप वीएनएस नए कानून के संबंध में जानकारी सुन रहे थे। जानकारी दे रही थी असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ की श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित, कई नई नदी नाले उफान पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ

0: इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। इससे पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक और धमतरी जिले में विकसित किए गए देश के पहले पैक्स आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नई नदी नाले उफान पर हैं। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड में भारी बारिश और नदी के तेज बहाव में धोंधा गोविंदपुर रामकोला मार्ग पर निर्माणाधीन एक रपटा बह गया है। इस रपटे के बहने से क्षेत्र के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं बलरामपुर जिले में लगातार बारिश के बाद कन्हर नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। रामानुजगंज स्थित एनिकट के ऊपर से करीब 1 फीट पानी बह रहा है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने एहतियात के तौर पर एनिकट के दोनों गेटों में ताला लगा दिया है। प्रशासन ने लोगों से कन्हर नदी के किनारे और एनिकट के आसपास नहीं जाने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जांजगीर चांपा जिले में लीलागर नदी पर स्थित कूटी घाट पुल क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग पर 31 जुलाई तक आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले में महानदी उफान पर है, जिससे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कोरबा जिले में भारी बारिश के कारण एक दर्जन से ज्यादा पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कई गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण बिलासपुर से रायपुर कोरबा और रायगढ़ मार्ग पर कई लोकल और मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बस्तर और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
1: छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बलरामपुर सूरजपुर जशपुर सरगुजा और इससे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और बिलासपुर संभाग रायपुर संभाग दुर्ग संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने भारी वर्षा का चेतावनी जारी किया। इसके अलावा बस्तर संभाग में कांकेर बीजापुर और इससे लगे हुए क्षेत्र में भी भारी वर्षा का चेतावनी जारी है। आगामी 4 दिन तक भी विस्तार रूप से वर्षा कंटिन्यू होने की चांसेस है।
0: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। यह सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं।

के समाचारों की ओर। धमतरी जिले में विकसित किए गए देश के पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पैक्स आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। कोलकाता में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस समारोह में इस मॉडल को ग्रामीण भारत में कृषि आधुनिकीकरण का एक अनुकरणीय उदाहरण माना गया। समारोह के दौरान बेहतर कृषि सेवाओं की उपलब्धता के लिए पैक्स का शक्तिकरण विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा में भाग लेते हुए धमतरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि धमतरी देश का पहला ऐसा जिला है जिसने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सीधे ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। दुर्ग जिले के जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कल 20 जुलाई को राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। कल रायपुर में आयोजित विशेष लोक अदालत में 847 चेक बाउंस के प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके लिए रायपुर जिला न्यायालय में 19 विशेष खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें लगभग 1800 मामलों को रखा गया। विशेष लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 172 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने पूर्व प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने कल अरुणपति त्रिपाठी को विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाने वाले प्रदेश के 149 बस ऑपरेटरों को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी बस संचालकों से 23 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर बसों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कोरबा जिला प्रशासन द्वारा कल रन फॉर ग्रीन मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, खेल प्रेमियों तथा आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। मैराथन में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की विजेता टीम की कप्तान किरण पिस्दा भी शामिल हुई। मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मैराथन के बाद प्रतिभागियों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया, साथ ही स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज केवल एक भवन नहीं बल्कि जिले की आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा में मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी शैक्षणिक सत्र से 50 सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई सत्र ODL पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने चालू शैक्षणिक सत्र के लिए BTEC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BTEC फूड टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन UG काउंसिलिंग के पहले चरण के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 जुलाई निर्धारित की है। नारायणपुर में इंश्योरेंस क्लेम दिलाने के नाम पर कमीशन मांगने के आरोप में पूर्व थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के पचरी गांव में सर्पदंश से 8 वर्षीय एक बालिका की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। कई नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश

0: होने की चेतावनी दी। खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। इससे पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक और धमतरी जिले में विकसित किए गए देश के पहले पैक्स आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार। निम्नाबाद जिंद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लड्डी, सालिनी, तिवांशी, वानी और आरबी खेरा। पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे। खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैंकरा। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र। दिल्ली से लालबाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डोली, कबीर जाटव, देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला प्रीतक, प्रीतम, धर्मराज मरकाम। रजौनी महोबा, बुंदेलखंड से उत्तर भानपाल, जयहिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। पौड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यादव, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भारत मक्कड़, कमल साहनी। मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। उत्तर प्रदेश दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग। बराड़ा, अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं अभिनेत्री फिल्म का गाना। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार है मजरूह और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम, और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जिसकी फरमाइश ईमेल के जरिए आप सभी ने की है। पुरानी भिलाई 3 चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जी शान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजिंदर सिंह ओबेरॉय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, पजौनिया जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, खांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिल्का और अड्डा मिल्का अलका मिद्धा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति निधि निखिल यश प्रयाण शिवम रेखा और धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला और आश्मय श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जय श्री ऋषभ और ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया और इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलतमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद सादाब खत्री, लूतरा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श और आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुरलाल सिंह और रविराज सिंह, रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं मन चली फिल्म का गाना किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसकी फरमाइश ईमेल के जरिए हमसे आप सभी ने की है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा, लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरीबाई मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ नामदेव, सौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश श्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र एंड नाजिर से नाजिया नासिर और साजिद साहिद, नागर कोहरा राजनगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साह, टिकू और मुस्कान, दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रेयांस, कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरब खुराना, एस के पप्पी, सहारनपुर से आशु मोची, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरुलकर, रतनमाला और ओमकार सुरलकर। आप सभी ने सुनना चाहा है कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना, उदित नारायण और साथियों की आवाज है, मजरू के लिखे गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। लीजिए सुनिए।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7:20 हुए हैं और अब लीजिए हम प्रसारित कर रहे हैं किसान श्रोता बहनों और भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनवैया जम्मू मयारुक रेडियो श्रोता संगवारी मन के स्वागत है। आज के कार्यक्रम में झोको कजरी बहनी के मया प्रीत भरी राम राम जय जोहार। का हाल चाल हमार संगवारी मन के भाई, खेती किसानी के बूता तो मस्त भगदराय हो ही भाई। आषाढ़ के जाती और सावन महीना के शुरुआती के समय आ गए है। हमार किसान मन के बूता तो यही समय रथे, कहूँ रोपा लगात हैं तो कहूँ निंदाई गोड़ाई करत हैं। हमू कार्यक्रम के शुरुआत दो लाइन से करी। आषाढ़ विदा लेवत थे, बद्री दे थे संदेश। आषाढ़ हर विदा लेवत थे, बद्री हर दे थे संदेश। सावन हरियर सपना ले, भर दे थे धरती के देश। आषाढ़ जावत मुस्काय, खेत में छोड़े आस। आषाढ़ हर जावे मुस्काय और खेत में छोड़े आस। सावन आके गांव गांव में लिखते हरियर राज। हरियर के राज रथे संगी हुआ आज के महीना में। तसंगी हुआ धरती महतारी के कोरा में उगे धान साग भाजी और फल। जब बिना जहर बिना रासायनिक दवाई के उगते ना तो सिर्फ अन्न नहीं रहे बल्कि अमृत बन जाते। तभी तो कथे धरती दाई के कोरा में जीवन के बीज बोआओ। धरती दाई के कोरा में जीवन के बीज बोआओ। प्राकृतिक खेती ला अपनावाओ और खुशहाली घर घर लावाओ। हाँ भाई ठोक्का समझे हा। आज हमन गोठियाबो एक ऐसन विषय में जेन सिर्फ किसान बनो है बल्कि हम सब जन बर। जतका जन जीव हवा ना उतका सब जन बरे, सबके जीवन बर बहुत जरूरी है। विषय है प्राकृतिक खेती और हमर जीवन। संगी हो आज के विषय में गुरतुर बोली में और सार गर्भित जानकारी देवो। पहले सुन ली संदेश आला।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवा कर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेशा ल सुनें, अब आईन अपन विषय मा संगी हो। आज के जमाना मा खेती के नाम ले पहली रासायनिक खातू, दवाई और महंगा बीज के बात होते, ता किसान ज्यादा उपज ले, उपज के आस मा धरती ऊपर अतका बोझ डाल देते कि जमीन की उर्वरा शक्ति दिन ब दिन घटत गे और जमीन कठोर होत गे, पानी दूषित होत गे और हमर शरीर घलो बीमारी के घर बनत जाते। एकर बीच एक आस के किरण बन के उभरी प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती के मतलब सिर्फ

खेती नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति के संग में दोस्ती करना होते। दोस्ती मतलब समझता ना, दो हस्ती जब मिलते तब दोस्ती होते। तो हम और प्रकृति दोनों जन मिलबो तो कतका सुघर दोस्ती हो ही, आप सोचाओ। एकर मतलब सिर्फ खेती नहीं बल्कि प्रकृति संग दोस्ती, धरती, पानी, हवा, जीव जंतु और मनखे सब एक दूसरे ले जुड़े हवाए। जेन खेती प्रकृति के नियम में चलते वही सच्चा विकास के रद्दा दिखाते। कहे गए माटी ह जियत रहे त जिनगानी मुस्काए, माटी ह जियत रहे त जिनगानी मुस्काए। आप प्रकृति संग जे चल ही तो सुख समृद्धि पाए। तब प्रकृति में, प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद के बदला गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत जैसन देसी संसाधन के उपयोग करे जाते। एकर ले खेती के लागत घटते और जमीन के सेहत सुधरते और किसान के आमदनी घलो बढ़ते। सबले बड़े बात, आज लोग न स्वस्थ भोजन खोजत हैं। अगर किसान प्राकृतिक खेती कर ही तो बाजार में ओकर फसल के मांग भी बढ़ी और कीमत तको बढ़ के मिलती। संगी हो, प्राकृतिक खेती सिर्फ किसान के फायदा नहीं करे। जब खेत है जहर मुक्त हो ही ना, तब पानी साफ रही और पानी साफ रही तब मन के और पशु पक्षी सब स्वस्थ रही और हवा शुद्ध त माने जाही और देखा पीढ़ी दर पीढ़ी घलो सुधर थे। त एक बात गठिया लेवा अपन अपन अचरा मा, हरियर खेत हरियर गांव और यही में बसते खुशी के ठाव। प्राकृतिक खेती के प्रचार और वही बनाही सुखमय संसार। तब भाई आज देश भर में हजारों किसान प्राकृतिक खेती अपना के सफल हुआ थे। कम लागत, ज्यादा मुनाफा और स्वस्थ जीवन, यही प्राकृतिक खेती के पहचान है। हमार छत्तीसगढ़ तो खुदे धान के कटोरा कहा थे। अगर हमार किसान प्राकृतिक खेती ला अपना ही तब हमार प्रदेश सिर्फ धान में नहीं बल्कि जैविक खेती में घलो देश भर में मिसाल बन सकत है। प्राकृतिक खेती ले गांव में रोजगार बढ़ी, युवा मन खेती ले जुड़ी, अब महिला स्व सहायता समूह घलो गोबर, खाद, जैविक उत्पादन और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी। तभी तो कहे गए गांव बचे त देश बचही, अब माटी के सम्मान रही। गांव बचही त देश बचही, अब माटी के सम्मान रही। अब प्राकृतिक खेती अपना के हर किसान धनवान बनही। तो हर किसान ला धनवान बनाना है संगी हुआ। धरती महतारी हमारे हजारों साल ले अपन कोरा मा पाला था वै, अब हमार जिम्मेदारी है कि हमन घलो ओकर सेवा करीन। रासायनिक खेती ले कुछ बछर ले फायदा मिल सकत है, लेकिन प्राकृतिक खेती ले अपन जीवन शैली बनावाओ। और सुना, धरती है हंसही त खेत लहराही, धरती हर हंसही त खेत लहराही और हर किसान के किस्मत चमकाही। तब प्राकृतिक खेती के जोत जलावाओ और हरियर भविष्य अब बनावाओ। तब संगवारी हो, आज के गोट बात प्राकृतिक से हमार जीवन जौन है वो जुड़े हवा। एमर यही संदेश रहिस के प्रकृति ले जुड़ के खेती करना स्वस्थ और समृद्ध समाज के सबसे मजबूत आधार है। संगी हो, अंत में यही कहबो, धरती हर हरियर मन हर उजियार हुए, धरती हर हरियर और मन हर उजियार हुए। अब प्राकृतिक खेती संग हर घर खुशहाल रहे। त माटी के मान बढ़ावाओ, अब प्रकृति के संग मया बढ़ावाओ, माटी के मान बढ़ावाओ, प्रकृति के संग मया बढ़ावाओ, सुख समृद्धि के रद्दा मा मिल के आवा आगू जावाओ। तय संगी हुआ, माटी महकाए और खेत लहराए, हरियर हुआ संसार। माटी महकी त खेत लहराही ना, त माटी महकाए खेत लहराए हरियर हुआ संसार। अब प्राकृतिक खेती ला अपनावाओ, यही है हमर करुण पुकार, यही है हमर करुण पुकार। जम्मो संगी संगवारी हमारे किसान भाई बहनी मन ले यही करुण पुकार करत हन कि प्राकृतिक संग दोस्ती करो। और आज है इतवार, संगवारी मल्ला अगोरा है अपन चिट्ठी पत्री के कावर के पारी है आप मन के गीत कार्यक्रम के, है ना भाई। तो पहली गीत बर देखा काखर चिट्ठी आ है, चलो आज के चिट्ठी पत्री शुरू करी।

निरुवाड़ भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेन्द्र साहू दुष्यंत साहू राघवेन्द्र साहू मोहन पारा अकलतरा ले अभिनव साहू अभिषेक साहू उमा देवी साहू आगो के चिट्ठी आहे ग्राम महमनपुर भक्तिन बाजार अकलतरा ले रमेश कैवर्त आरती कैवर्त राजकुमारी कैवर्त आऊ आगे की चिट्ठी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा और छत्तीसगढ़ बावली मर्रा कोनार से उत्तम कुमार कौशिक बिहारी लाल कौशिक हरीश कुमार कौशिक शिवम कुमार कौशिक और आगे चिट्ठी आहे माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा राजनांदगांव ले नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी दिवेंद्र प्रताप नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू के और संगी हुआ ए मन के फरमाइश में आवा सुनीन छत्तीसगढ़ के माटी के महक और महुआ के सुवास और गांव गवई के मिठ बोली ले सजे हमर आज के सुघर गीत के सफर है ना त चलिए संगी हुआ पहली गीत बर जिला स्वर दे हैं भूपेन जायसवाल और गीता साहू मैं

0: संगी हुआ, देखा कतका सुघर सोनहा बिहान, जिह धरती के मुस्कान, माटी के सुगंध मन ला मोह लेते, हर दिल में उमंग जागे रथे, अतका सुघर एहसास समर्पित ये सुघर गीत रिसे लजिला स्वर देहरीन हे भूपेन जायसवाल और गीता साहूमन। आगू के गीत बर हमार सो चिट्ठी आहे शिवाजी चौक राजीव ले अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कुश श्रीवास्तव, और अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, दिव्यांश, आरोही और लवी श्रीवास। आगे के चिट्ठी आहे ग्राम रसेड़ा अकलतरा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, टिकेश साहू, वासु डॉली और पूर्वेश साहू मन के। फिर चिट्ठी आहे नकुर श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीत स्थान लुथरा खमरिया ले, और आगे चिट्ठी आहे चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और इहे लहे खुशी रौनक सेन। ए मन के फरमाइश में संगी हुआ आगे चलबो गांव के खुशबू और गांव के बोली उहू देशी अंदाज में, तैयार हो जावाओ काबर के अब बजी वो गीत जिहर मन ला नाचे में मजबूर कर दी, काबर के हमर टुकनी में है भाटा के सादगी, मिर्चा के तीखापन, ये गीत में बसे है हमर माटी के अपनापन। ता आवा अपनापन ले सुनीन मीरा वैष्णव और कमल राजपूत के स्वर में ये सुघर गीत ला।
1: देखा तो का धरे हसो
2: भाटा।

माँ संगवारी हो देखा खर कर मन के फरमाइश माँ कैसन सुघर गीत ल सुने जेला स्वर दे रही है मीरा वैष्णव और कमल राजपूत मन। आवा आगे के गीत पर फरमाइशी चिट्ठी आए छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा और छत्तीसगढ़ बावली मर्रा कोनाले उत्तम कुमार कौशिक बिहारी लाल कौशिक हरीश कुमार कौशिक और शिवम कुमार कौशिक मन के। आगे के चिट्ठी आए हमार संगवारी मन के बेल गहना शक्ति बहरा ले श्याम शंकर मिस्त्री बाबा विजय पायलट रागनी गीता देवी कैलाश चंद्रा चंद्रावली कुसुम काशीपुरी राधा पड़वार और आगे के फरमाइश पर चिट्ठी आहे ग्राम दतरेंगीले प्रतिमा यदु लक्ष्मी मीना यदु रीना यदु विश्राम यदु और पार्वती यदु के और चिट्ठी आहे रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा मन के संगी हुआ इमन के सब के फरमाइश माँ। आवा गीत सुनाए बट चलिन ऐसन हर रद्दा माँ जेहा दिल के संगे संग छत्तीसगढ़ के माटी के खुशबू तको लेके आते अपन संगवारी संग जब सफर होते ना और रद्दा भर हंसी ठिठोली चलत रहे तब सफर एक मीठा याद बन जाते और जब बाजार पहुंच गए तो पूछा जान रंग रंग के लुगरा चूरी गहना टिकली फुंदरी ये सब तो रथे और संग में रथे अपन मन के लगाव और अपन संगी के संग यादगार सफर तो तैयार हो जावो गाड़ी के सीट के बेल्ट लगावो और मुस्कान ले चेहरा ला सजावो। अरे भाई रद्दा माँ मुस्कान चले मया के हुए बहार और गाड़ी माँ यदि संग तोर चलन त रंग जावा ये बेमे तरह के बाजार त संगी हुआ आवा चली बेमे तरह के बाजार जिला स्वर दे परस।

देखा संगी हुआ, कतका सुघर बेमे तरह के बाजार ला बुल के आयन, और ये सुघर गीत ला स्वर धेरे इन्हें परसराम यदु और खर्ष संगवारी मन। आगे के गीत पर हमन बा चिट्ठी आहे पोटिया कला दुरुगले संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू के। और चिट्ठी आहे आगे तेलीपारा बिलासपुर ले रज्जन साहू, बेबी ईसानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास के। और संगी हुआ देखा ग्राम बसी बार ले शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद।

कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार वर्षा, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर और शांति नगर पाली ले विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, कुमारी प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। आगे ग्राम दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरीन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, ये सबके फरमाइश में सुनिन। अगला गीत संगी हुआ हाट बाजार ले आए तक कुछ जीनीस भी तो लाए ना, और देखा तो पैरी पहन के निकलीस तहां छन ले चुगली कर दिस, कथे पैरी के छन छन मा बसथे मया के सूर, पैरी के छन छन मा बसथे मया के सूर, और धरती ले जुड़ावे रखते अपन संस्कृति के नूर, अपन संस्कृति ला, अपन लोक गीत ला, अपन चंचल आवाज मा कतका सुघर सुर दे है और स्वर दे है ये गीत ला ममता चंद्राकर उखर संगवारी मन, ता आवाज सुनी ये मिठ बोली मा सुघर गीत।

देखा संगी हुआ कतका सुघर गीत ल सुने जेला स्वर देहरेन हे ममता चंद्राकर और खर संगवारी मन। आगे के गीत बर चिट्ठी आहे ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति मन के। आगे के चिट्ठी आहे जांजगीर महिंदा ले राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुम लता कश्यप और खुशबू कुमारी कश्यप के। और चिट्ठी आहे पेंड्रा पाठे ग्राम धोपा टोले पवन कुमार सूटी, बबली संतोषी सूटी, कैलाश कुमार, श्याम शंकर दरक्का और राजू भाई के। संगी हुआ ये सब के फरमाइश में कार्यक्रम के आखिरी गीत है ना जेमा मन के माया के मिठ गुनगुनाए और बिछड़न के कसर ये दोनों के संगे संग मन के

एक कोमल भावना समाये हवय। गीत ला स्वर दे हे बैतल राम साहू और खर संगवारी मन। कहा थे कजरी दीदी बेरा हो जाही वो, अब चल जाबो भाई जाबो, पर ये तो सुन ली पानी के छन छन मा गूंजे मया के पुकार, पानी के छन छन मा गूंजे मया के पुकार, औ मोला जावन देना रे अलबेला मोर सुन के, भींज जाथे मन के संसार, भींज जाथे मन के संसार। आवा सुनी संगी हुआ बैतल राम साहू खर संगवारी मन के सुघर स्वर मा, ये सुघर गीत।

संगी हुआ बैताल राम साहू औखर संगवारी मन के स्वर के संग फरमाइसी गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत ए मां रही से छत्तीसगढ़ मा के माटी के महक महुआ के सुवास और गांव गवाई के मीठ बोली ले सजे हमार आज के सुघर गीत के सफर आप सब जन के संग मा सुघर रहिस। अब आप मन के गीत सिरात है आगू कार्यक्रम में पारी है मंडी कति जाए के त आज के मंडी भाव है संगवारी हुआ धान हवा है 1,850 रुपये कुंटल और अधिकतम 2,700 रुपये कुंटल और सादा धान हवा है 1,910 रुपये कुंटल गेहूँ के भाव हवा है 2,330 और अधिकतम 2,640 आलू 2,000 धनिया बीज 7,000 सरसों 2,100 पीला सरसों है 7,100 और पताल 2,300 रुपया कुंटल आज बाजार में मंडी के भाव रही से और मौसम के बात करबो तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस अब बरसात की तो पूरा संभावना है चारों कति करिया बादल छाए हवा त हमार संगवारी मन सावधान रहना है। संगवारी हुआ आज के कार्यक्रम ले सिराय के बेरा हुआ थे त सब जन के चिट्ठी पत्रिका गोरा रही कि कार्यक्रम आज के कैसे लगेस और कार्यक्रम में देवा विदा झोंका अपन कजरी दीदी के राम राम जय जोहार।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के इस अंक में आज हम समेट लाए हैं शंकर महादेवन के गाए गीतों को। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत से।

और अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप तक पहुंचा रहे हैं शंकर महादेवन के गाया गीत को, जिसे लिखा है समीर ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं।

इसी गीत के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है, FM बैंड 103.2 MHz पर।

रजनीगंधा कार्यक्रम के ही संग में अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज 19 जुलाई का दिन है और यादें उभर आई हैं हिंदी गीत विधा के प्रेरणा पुरुष गीत गंधर्व ख्याति लब्ध गीतकार पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास सक्सेना यानी नीरज की, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। गीतकार नीरज अपने गीतों की प्रयोग धर्मिता, पारिवेशिक चैतन्यता और प्रस्तुति के विशेष शैली के कारण अद्वितीय थे और रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की यादों को जीवंत करते हैं। उनके गीतों में मानवीय प्रेम और करुणा के विविध आयाम, जीवन दर्शन के सूक्ष्म संकेत, सामाजिक सशक्तिकरण के संकेत और गहन मानवीय संवेदना जहां हमें भाव विभोर करते हैं, वहीं दायित्व बोध के प्रति सजग भी करते हैं। नीरज पर बहुत सी बातें हम करेंगे और अपनी बातचीत में आइए शामिल करते हैं नीरज के ही लिखे अनमोल गीतों को और ताजा करें उनकी यादों को।

गीतकार नीरज जिंदगी के कारणों को बहुत ही नज़दीक से देखते थे और अपने अनुभवों को गीतों की लय में ढालते रहते थे। गीत सम्राट नीरज के गीतों का प्रमाण है कि आज भी उनकी हर बात पर हो जाती है पागल कलियां। जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में।

संगीतकार नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में पुरावली गांव में हुआ था। उन्होंने अनेकों हिंदी फिल्मों में सर्वोत्तम गीत दिए हैं। उनके गीतों में जीवन का फलसफा भी गहराई तक झलकता है और जो हमारे कर्तव्य हैं, मानवीय कर्तव्य, उनकी भी झलक उनके गीतों में देखने को मिलती है और वो सभी गीत आज भी जनमानस की जुबान पर चढ़े हुए हैं। जैसे कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, और मेरा नाम जोकर फिल्म का, ए भाई जरा देख के चलो, ऐसे बहुत से गीत हैं जिनमें नीरज की जिंदगी के प्रति फलसफा झलकती है। आइए आगे बढ़ते हैं इस मीठे से गीत के साथ।

नीरज मूलतः एक कवि हैं, जिनका कैरियर कविता लेखन से ही शुरू हुआ था। उन्होंने फिल्मों में भी अपने गीत लेखन का परचम लहराया और कई यादगार गीत दिए हैं। कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के बाद नीरज को मुंबई से फिल्म नई उम्र की नई फसल फिल्म के गीत लिखने का बुलावा आया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पहली फिल्म में संगीतकार रोशन के साथ उनके लिखे हुए कुछ गाने जैसे कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर हुए। इसके बाद नीरज का फिल्मों के लिए गीत लिखने का सिलसिला शुरू हो गया।

गीतकार नीरज ने एक बातचीत में बताया था कि जब राज कपूर ने उनसे फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए एक ऐसा गीत लिखवाने का अनुरोध किया जिससे कि फिल्म की कहानी आगे बढ़ सके, तो नीरज ने ए भाई जरा देख के चलो गीत लिखा। लेकिन उनके मुताबिक संगीतकार को इसके बोल पर धुन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तब राज कपूर ने पूछा था कि इस गीत को गाया कैसे जाए, तो नीरज ने अपने अंदाज में यह गीत गाकर सुना दिया। बाद में उनकी ही धुन पर इस गीत को संगीतबद्ध किया गया, जिसे मन्ना डे ने उतने ही खूबसूरती से गाया है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं गीतकार नीरज को फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 70 के दशक में लगातार 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुका है। और जिन फिल्मों के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला वो हैं 1970 में आई फिल्म चंदा और बिजली, 1971 में आई फिल्म पहचान जिसका गीत बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, और सन 1972 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत ए भाई जरा देख के चलो जो अभी आपने सुना। इसके अलावा उनके तो सभी गीत कर्णप्रिय और मधुर हैं। हाँ, प्रेम पुजारी फिल्म में देवानंद पर फिल्माया गया उनका गीत शोखियों में घुला जाए भी उनके लोकप्रिय गीतों में शामिल है जो आज भी गाई और सुनी जाती है।

1972 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत ए भाई जरा देख के चलो जो अभी आपने सुना। इसके अलावा उनके तो सभी गीत कर्णप्रिय और मधुर हैं। हाँ, प्रेम पुजारी फिल्म में देवानंद पर फिल्माया गया उनका गीत शोखियों में घुला जाए भी उनके लोकप्रिय गीतों में शामिल है, जो आज भी गाई और सुनी जाती है।

0: श्रोताओं, गौरतलब है कि भारत सरकार ने गीतकार नीरज को साल 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 19 जुलाई 2018 को गीतों के इस सम्राट का ईश्वरीय तत्व में विलीन हो जाना गीतों के अनुपम संसार में वह रिक्तता है जो कभी भर नहीं सकती, लेकिन उनकी याद सदा उनके गीतों में अमर रहेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं इस महान गीतकार को और रजनीगंधा कार्यक्रम के इस अंक से विदा लेते हैं। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का

0: आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही

0: गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामले

0: की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रांझना से। आवाज़ें श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा दत्त की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत AR रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
6: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

अभी हम विविध भारती के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद संसद के समक्ष मुद्दे, ये परिचर्चा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और

0: और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
2: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे कोशिश रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम इस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग

0: रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेते, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करें।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं, पूरे देश की आवाज है। अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई, जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या है लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसके बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गाँव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोश पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है

0: शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है। मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
1: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई, पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन

0: मंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दिया, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है क्या? क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो, इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपने जिम्मेदारी

0: से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उनपे आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं। हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुधाने का महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया, ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है।
1: जी अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और CBI का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ

0: चाहता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका, ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग।
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, चूंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है।
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखे, हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आ जाता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखें जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए किया और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा।
3: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहां पे वर्ल्ड रैंकिंग में, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहां पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहां पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाषण हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष की

0: अच्छी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है। उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं। तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग, जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही? क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं, जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही, उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए? आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे, और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
3: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी। एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं, देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है, उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं, वो उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए है, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है, और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: संसद के समक्ष मुद्दे, ये परिचर्चा अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। अब से लेकर 11 बजे तक हम विविध भारती के कार्यक्रम रिले करेंगे।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। समय के स्केल पर हमें नहीं पता कि कब हमारे दिल पर लिख गया था तुम्हारा नाम। समय की शुरुआत से चल रहा है जो सफर, उसे समय के आखिर तक कायम रहना है। हम और तुम समय के थपेड़ों के बावजूद मिलते रहे हैं, हम चलते रहे हैं साथ, और बस साथ ही चलते रहना है हमें। ये सफर जिंदगी का नहीं, समय का सफर है, और हर पल के चेहरे पर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए।

दुनिया बधावासियों का मेला है। ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें, ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता। आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर। हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज की दरकार नहीं।

0: छाया गीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे, फिल्मों के नाम, थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां,
1: सामने दीवार थी गुजरियों की।
0: आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और

0: विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized